नमस्कार। FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 अगस्त सन 2026। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा इस मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरवी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर। सुबह के 8:57 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे आज के शेष व विशेष कार्यक्रमों का विवरण व उसका प्रसारण समय।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 9 बजे आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद दोपहर 1 बजे और शाम 6:30 बजे और 6:45 मिनट पर आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

9:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान और 9:20 का समय रहेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का। नौ बजकर 40 मिनट का समय रहेगा कार्यक्रम फिल्म गैर फिल्मी गीत

0: और एल्बम सॉन्ग का। और ठीक 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के, और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5 बजे, और 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत में प्यारे से नगमे। कार्यक्रम माटी का स्वर का समय रहेगा शाम 6:20 पे, और शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। रात्रि माफ कीजिएगा शाम 7:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम दिल से, सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से। रात्रि 8:30 का समय रहेगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आप सुनेंगे जल की। रात्रि 8:45 का समय रहेगा दिल्ली केंद्र से समाचार संज्ञा का। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में दर्द भरे गीत। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कार्यक्रमों का विवरण और उसका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 MHz पर। सुबह के 9 बजे हैं प्रस्तुति जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: रणनीति सम्मेलन आज से नई दिल्ली में, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कई स्थानों पर कार्रवाई कर मिलावटी खाद्य पदार्थ नष्ट करवाए गए। और सावन मास के अंतिम सोमवार पर आज शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कांवड़ियों में खासा उत्साह। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है, और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है, और इस पहल में GRAC तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। 3 दिन का ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में आदिवासी संग्रहालयों और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के रोड मैप को आगे बढ़ाता है, जिसके तहत भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी समुदाय पीछे ना छूटे। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके करेंगे। इस सम्मेलन

में चैटबॉट का शुभारंभ होगा और आदिवाणी प्लेटफॉर्म में एक बड़ा अपडेट किया जाएगा। इसमें नई iOS एप्लीकेशन, 5 नई भाषाओं का समावेश और प्लेटफॉर्म पर कई नई सुविधाएं शामिल हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के तहत जयपुर नगर निगम के सभी वार्डों में रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को निर्धारित वार्डों के नामांकन पत्र प्राप्त करने और नामांकन प्राप्ति के बाद निर्वाचन संबंधी सभी कार्रवाई संपादित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने निर्धारित नामांकन प्राप्ति स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। इस बीच जयपुर नगर निगम के चुनावों में मतगणना स्थल में बदलाव किया गया है। निगम के 150 वार्डों की मतगणना JLN मार्ग स्थित राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज परिसर की बजाय सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन परिसर में होगी। 14 सितंबर को मतगणना वाले दिन गणेश चतुर्थी होने के कारण मोती डूंगरी मंदिर में आयोजित होने वाले मेले और JLN मार्ग पर श्रद्धालु की भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से सघन निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए दूध, मावा, मिठाई, पनीर, घी और अन्य खाद्य पदार्थों की विशेष निगरानी की जा रही है। इसी कड़ी में जयपुर मुख्यालय की केंद्रीय टीम ने झोटवाड़ा स्थित एक डेयरी का निरीक्षण किया। मौके पर जांच कर करीब 300 किलो पनीर नष्ट कराया गया। वहीं फलौदी के गांव खीचन में अवैध वनस्पति फैट निर्माण इकाई पर छापामार कार्रवाई की गई। टीम ने वहां करीब 690 किलो वनस्पति फैट जब्त कर फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया। उधर धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में एक डेयरी से

0: शिक्षित की जा रही है। राजस्थान पुलिस के आरएसी और एमबीसी कैडर से चयनित 25 महिला पुलिस कार्मिकों का आज से हरियाणा के मानेसर में स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। 13 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में ये पुलिस कार्मिक गहन कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। प्रशिक्षण के लिए रवाना होने से पहले कल इन महिला कार्मिकों को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर्म्स बटालियंस रूपेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने महिला जवानों को प्रशिक्षण के दौरान कड़े अनुशासन, अत्याधुनिक हथियार तकनीक और जीरो एरर की नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। जयपुर ग्रामीण जिले के आंधी थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कल शाम तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर पर घास काट रही 3 महिलाओं को कुचल दिया। हादसे में 3 की मौत हो गई। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर जोधपुर में एक खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। घटना बोरुंदा थाना क्षेत्र के चौकड़ी गांव में हुई। सावन मास के अंतिम सोमवार पर आज शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया जा रहा है। बाड़मेर जिले के कपालेश्वर, हरपालेश्वर और जसदेव तालाब स्थित शिव शक्ति धाम तथा सफेद आंकड़ा महादेव मंदिर में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पाली के परशुराम महादेव मंदिर में मेला भरा है। भीलवाड़ा जिले के मंडल कस्बे से जिले के प्रसिद्ध हरणी महादेव मंदिर तक विशाल कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। भरतपुर में कावड़िये पवित्र सरोवर से जल लाकर भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। वहीं सवाई माधोपुर के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं।
1: श्रावण मास के सोमवार के चलते जिले के शिवालयों में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए भक्तों के बीच भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शिवाड़ स्थित श्री घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ भारी संख्या में भक्त भोलेनाथ को जल, दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक कराकर आग, धतूरा, बिलपत्र अर्पित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहां आज भी सहस्त्रघाट और रुद्राभिषेक के आयोजन होंगे। वहीं शाम को भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले के अन्य शिवालयों में भी पूजा अर्चना अभिषेक के साथ साथ पवित्र सरोवर से कावड़िये जल लाकर अभिषेक कर रहे हैं। अंतिम सोमवार के चलते भक्तों में आस्था और श्रद्धा का उल्लास देखने को मिल रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कई स्थानों पर कार्रवाई कर मिलावटी खाद्य पदार्थ नष्ट करवाए गए। और सावन मास के अंतिम सोमवार पर आज शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कांवड़ियों में खासा उत्साह। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: श्रोताओं, सुबह के 9:10 में प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्रीराम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े हों

सुनेंगे भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्रीराम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है।

श्रोता हूँ, अभी आपने सुना हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, सुबह के 9:20 में। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुनेंगे जगजीत सिंह और लता मंगेशकर को। तो आइए पहले सुनते हैं जगजीत सिंह को।

नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।

छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया, आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जसवंतगढ़।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

साथियों, अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आपने सुना जगजीत सिंह और लता मंगेशकर को। ये आकाशवाणी नागौर का आजर्मी चैनल है, FM में 103.7 MHz पर। सुबह के 9:40 हुए। अब हम आपको सुनवाते हैं एल्बम सॉन्ग। साथियों, शुरुआत करते हैं एल्बम बेगाना से। आवाज़ राघव चैतन्य के, गीत और संगीत राघव चैतन्य का।

श्रोताओं, एल्बम सॉन्ग का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं एल्बम चैन से। आवाज़ ऋषि की है, गीत ऋषभ चंदन का है और गीत लिखा है सागर प्रभु और मोहित शर्मा ने।

श्रोता हूँ, एल्बम सॉन्ग का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं, एल्बम ऐसा कभी हुआ नहीं से। आवाज़ किशोर कुमार, आर डी बर्मन, नीति मोहन और समीर टंडन की है। गीत लिखा है गुलशन बावरा और प्रियंका आर बाला ने।

करता हूँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम एल्बम सॉन्ग। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं एल्बम ले जाएंगे तेरे सजना से। आवाज़ पवन सिंह और पलक मुचल की है, संगीत और सबीर अहमद का, और गीत लिखा है सबीर अहमद ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुने एल्बम सॉन्ग। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 10 बजे हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। साथियों, शुरुआत करते हैं फिल्म खुदा गवाह से। आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं इला अरुण, उदित नारायण और सुदेश भोसले की आवाज में, फिल्म त्रिमूर्ति से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राम लखन से। आवाज़ मोहम्मद अजीज, अनुराधा पोडवाल और नितिन मुकेश की है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में हर मुश्किल को आसानी से।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म अजूबा से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

संगीत में गाने पुराने ज़माने के, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM में 103.7 MHz पर सुबह के 10:30 में। अब हम आपको फिर से ले चलते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में और सुनवाते हैं गाने नए तराने नए। साथियों, शुरुआत करते हैं फिल्म मैं तेरा हीरो से। आवाज़ नीति मोहन और जावेद अली की है, संगीत साजिद वाजिद का और गीत लिखा है कौशर मुनीर और दानिश सबरी ने।

0: इसी वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं ममता शर्मा, दलेर मेहंदी और मास्टर सलीम की आवाज़ में फिल्म यमला पगला दीवाना से। गीत और संगीत अनु मलिक का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मीका सिंह की आवाज़ में फिल्म थैंक यू से। संगीत प्रीतम का और गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: फिल्म संगीत का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन और सेलमाली खुलगड़ी की आवाज़ में, फिल्म गोरी तेरे प्यार में। संगीत विशाल शेखर का और गीत लिखा है अनविता दत्त ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उंगली से। आवाज़ गुलजार सिंह की है,

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धुरंधर द रेवन से। आवाज़ उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और क्वीन हर्बी के, गीत के बोल समीर अंजान के और संगीत शाश्वत सचदेव के।

0: छोड़ता हूँ। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफर यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर सुबह के 11 बजे। अब हम आपको ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन की ओर, सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आशा भोसले की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं सलीम जेलानी का कलाम। मौसीकी तरतीब दी है गुलाम अली ने। एल्बम का नाम है मीराज-ए-गज़ल।

0: जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम रंग तरंग की अगली पेशकश सुनिधि चौहान की आवाज में सुनिए। गीतकार है विशाल ददलानी, संगीत है विशाल शेखर का और एल्बम का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती।

0: 사랑.
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। अलीशा चिनॉय की आवाज में नितिन रायकवार का लिखा गैर फिल्मी पॉप गीत सुनिए। इसे सुरों में ढाला है संदीप चौटा ने।

लीजिए सुनिए एक गैर फिल्मी गीत फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीत है ललित सेन का, एल्बम का नाम है याद पिया की आने लगी।

0: खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है दिलीप वर्मन का, एल्बम का नाम है रात।

सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में, बस ज़रा वफा कम है तेरे शहर वालों में। राजकुमार रिजवी और इंद्राणी रिजवी की आवाज़ों में हम आपको सुनवा रहे हैं शायर बशीर बद्र की एक खूबसूरत गज़ल। संगीत है कमलकांत का।

कार्यक्रम रंग तरंग की अगली और अंतिम पेशकश है तलत अजीज की आवाज में। शायर हैं इब्राहिम अश्क, धुन है फिदा हुसैन की।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं। वे आज एलोरा जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापानी कंपनियों से भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और सुजुकी जैसी सफलता की कहानियां बनाने का आह्वान किया। जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी और भारतीय दूतावास के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं जापानी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी

0: एक क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा राज्य शिव भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: अंतिम सोमवार के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, एआई आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वे परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी गेट खोलने का अनुरोध किया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। चायकाल तक भारत ने 6 विकेट पर 419 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

साथियों, अगला सदाबहार गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं इंदीवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

0: ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया।
3: साथियों, कार्यक्रम यादों की महफिल में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी को। आज उनकी याद का दिन है। लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। नगमा निगार है इंदीवर, तर्ज है कल्याण जी आनंद जी की। फिल्म का नाम है कुर्बानी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत सुनिए जिसे लिखा है अनजान ने, आवाज है किशोर कुमार की, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

साथियों, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा अगला नगमा है मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं इंदिवर, फिल्म का नाम है सफर।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज की ये महफिल सजी है कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी की यादों से। तो आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है एम जी हशमत ने, फिल्म का नाम है कोरा का।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: है इंदिवर की संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले।

0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

धर्मात्मा, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश और कंचन की आवाजों में। गीत को लिखा है इंदीवर ने, सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मुकेश की आवाज में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्र सेवा देश की सुरली धड़कन। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज पाली के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मिल क्षेत्र की ओर से शहर के मुख्य मार्गों से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छात्राएं पोस्टर और बैनर के माध्यम से आमजन को लोकतंत्र में प्रत्येक वोट के महत्व का संदेश दे रही हैं। वहीं ब्यावर में स्वीप टीम के निर्देशन में स्वीप की पाती और वोटर की मनुहार विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वीप प्रभारी डॉक्टर संजू जैन ने बताया कि इसमें विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत लघु नाटिका आकर्षण का केंद्र रही। उधर जैसलमेर में सेक्टर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। वहीं 12 में मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों का पहला प्रशिक्षण आज से आयोजित किया जा रहा है। रेलवे ने पूरे रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके तहत पेयजल टैंकों और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई और कीटाणु शोधन किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे, जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नल और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 सहित मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है और अधिकतर लोग उचित देखभाल तथा विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इस इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। सावन मास के अंतिम सोमवार पर आज शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया जा रहा है। जयपुर के ताड़केश्वर और झारखंड महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बाड़मेर जिले के कपालेश्वर, हरपालेश्वर और जसदेव तालाब स्थित शिव शक्ति धाम तथा सफेद आंकड़ा महादेव मंदिर में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहां वातावरण शिवमय बना हुआ है। पाली के परशुराम महादेव मंदिर में मेला भरा है। वहीं सवाईमाधोपुर के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में आस्था के विभिन्न रंग देखने को मिल रहे हैं। नई दिल्ली में बीकानेर हाउस में आयोजित तीजोत्सव में राजस्थान की लोक संस्कृति, परंपराओं, कला, हस्तशिल्प, संगीत और खानपान को समर्पित

0: विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जीवंत झलक देखने को मिल रही है। कल सांस्कृतिक संध्या में जैसलमेर के प्रसिद्ध लोक गायक कुतले खान ने अपनी प्रभावशाली लोक और सूफी गायकी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत केसरिया बालम के गायन से हुई। सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। तीजोत्सव में राजस्थानी खान पान के फूड स्टॉल भी आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तीजोत्सव आज संपन्न होगा। प्रदेश में मॉनसून की कमजोर पड़ने से विभिन्न स्थानों पर उमस का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। हालांकि पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। 4-5 स्थानों पर भारी बारिश भी हुई। सबसे ज्यादा 95 मिलीमीटर बारिश भरतपुर के कुम्हेर में हुई। भरतपुर जिले में बीती रात से रुक रुक कर तेज बरसात हो रही है। लगातार बारिश के कारण जिले के सबसे बड़े बारिठा बांध में पानी की अच्छी आवक हुई है। जलस्तर बढ़ने पर बांध का एक गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई है। जल संसाधन विभाग के अभियंता दशरथ सिंह गुर्जर ने बताया कि कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से बांध का जलस्तर बढ़कर 28 फीट हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 में फिर से हम आपको ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420022233।

एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो. जी हाँ, शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गाना है जो जिसका जवाब आपने हमें दे दिया है. और अब हमारा सवाल ये है आपसे कि क्या आपने किसी से कोई सवाल किया है और आज तक उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं? जी हाँ, आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और आज तक उसने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया? ऐसा कोई उदाहरण आपके पास हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा. एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब ही तो ज़िंदगी की आधी उलझन और आधा सुकून है. सवाल तलाश की आग है और जवाब उस आग पर ठहरा हुआ पानी है. हमें कभी कभी लगता है सवाल यानी अमृत तृष्णा है, मगर वो भी तो एक दृष्टि भ्रम है.

की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है, संगीत किसका है ये बताइए। और हाँ ये भी बताइएगा कि आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और आज तक उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। रोशन का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना, और सचमुच कुछ सवाल जो होते हैं बड़े लाजवाब होते हैं। ये हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं। जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? जवाब, वक्त। ये वक्त कब राजा को भी रंक बना देता है। सवाल, सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? जवाब, ठोकर और असफलता, जो इंसान को जीवन का असली पाठ पढ़ाती है। यानी सवाल भी महत्वपूर्ण होते हैं और जवाब भी। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल पूछने का जवाब तो लोग घुमा फिरा कर दे देते हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब तुरंत नहीं दिया जा सकता है। मैं कह देती हूँ कि कुछ कुछ सवाल का जवाब वक्त भी देता है, इसलिए वक्त का इंतज़ार करो। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब का यह सिलसिला कभी नहीं थमता। एक सवाल के बाद दूसरा और फिर अनगिनत सवाल खड़े हो जाते हैं। जब दुनिया सवाल करती है तो असमंजस होता है कि दिल की सुने या दिमाग की। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे सवालों का जवाब देगी, तो उसने मुझसे ही पूछ लिया कि तुम कौन हो। यानी इन्होंने इबारत में से कुछ जो बातें हैं या कुछ इनके हिसाब से जो गाने सुनवाए जाने हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अनुपमा फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं। आवाज़ हेमंत कुमार की, कैफी आज़मी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। हमने आपसे पूछा कि क्या किसी से आपने कोई सवाल किया और अभी तक आप उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसी के साथ

ये भी पूछना चाहते हैं कि कोई आप व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जिनके जवाब देने का जो अंदाज है वो आपको बड़ा पसंद आता है, और वो जवाब अंदाज जो है वो कैसा है उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताइएगा। चलिए अनुपमा फिल्म का गाना सुनिए।

धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना। एक हमारे साथी की बात है कि दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, इसी सवाल जवाब में उलझे हुए हैं। कभी किसी को जवाब देने पर कोई उलझन न बन जाए।

सवालों के जवाब कई तरह से दिए जा सकते हैं, कभी मौन रहकर आंखों से, हाव भाव से, कभी बगैर बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। उलझे हुए सवालों की परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं, किसी न किसी तरह समय के साथ जवाब मिल जाएगा, ये सोचकर सकारात्मकता ले आती है, फिर भी मन उलझा रहता है। एक साथी लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज़्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पर कोई शक किया जा रहा हो या हमारा इम्तिहान लिया जा रहा हो, तब इंसान अपने को बहुत असहज महसूस करता है। लोग अक्सर अपनी उत्सुकता या नियंत्रण की चाहत में सीमाओं को भूल जाते हैं। हर सवाल का जवाब नहीं होता और कोई ज़रूरी भी नहीं कि हर कोई आपके सवाल के लिए तैयार बैठा हो। और एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब की इस पहेली ने मैं मुझे मेरी बेटी की याद आई। अभी वह 2 साल की है और 15 अगस्त को उसका बर्थडे था। वो मुझसे ऐसे ही सवाल पूछती है कि इसका जवाब नहीं दे पाता हूँ मैं, कभी कभी जवाब दे भी पाता हूँ। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, मेरे पापा रात को सोए और सुबह जागे ही नहीं। ये सवाल हम पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं। शिकारी फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है और अजीत और रागिनी पर फिल्माया गया ये गाना।

फारूक कैसर का लिखा और जीएस कोहली का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रही है कि सवालों की धुंध से ही तो जवाबों का सूरज उगता है, लेकिन हर रोशनी अपने पीछे एक नया साया छोड़ जाती है। हम जीवन भर जवाबों की तलाश में भटकते हैं, पर हर

मिला हुआ जवाब एक नया प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब समय हमसे पूछता है कि तुमने क्या पाया और क्या खोया, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हिसाब कर्मों का दे या भावनाओं का। मैंने एक दिन बहती नदी से पूछा, तुम थकती क्यों नहीं? उसने पलटकर मुझसे ही पूछ लिया, तुम रुकते क्यों नहीं? पहचान क्या है तुम्हारी? एक बहती हुई लहर या किनारे पर बैठा कोई अजनबी? प्रश्नों का ये भंवर थमता ही नहीं है। एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ सवाल का जवाब मिल जाए, ये हर सवाल का जवाब मिल जाए ये ज़रूरी तो नहीं, कुछ खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे गणित के अध्यापक जो थे वो बहुत अच्छे से प्रश्न पूछते थे और उत्तर भी बहुत अच्छे से देते हैं, कमज़ोर छात्र छात्राओं को भी गणित बहुत आसानी से समझ में आ जाती थी। एक साथी लिख रहे हैं कि कॉलेज लाइफ में एक लड़की हमें मन को भा गई थी, उसे अंतर्देशीय पत्र भेजकर शादी के लिए लिखा था जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। बुढ़ापे में मुलाकात हुई तो मैंने शिकायत करते हुए अंतर्देशीय पत्र का हवाला दिया तो जवाब आया कि हमें पसंद किया था तो चले आते हाथ मांगने, मेरा निर्णय मेरे माता पिता लेंगे, मैं नहीं। आप समय पर आते तो आज मैं आपके साथ होती, ये उन्होंने लिखा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि प्रायः बहुत रोचक तरीके से लोग उत्तर देते हैं, सभी हतप्रभ रह जाते हैं, पूर्ण प्रमाण के साथ उनका उत्तर देने का भाव सदैव संतुष्टि प्रदान करता है, ये इन्होंने इनकी दीदी के बारे में लिखा है। चलिए धन्यवाद आपका। और अब हम अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, जहाँ निसार अख्तर के बोल, एन दत्ता का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं।

ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना आपने सुना, मीनू मुमताज और बलराज साहनी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मंजू जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इन दिनों मेरे बचपन के शहर मुंबई का मौसम कैसा है। तो जी हाँ, हम आपको जवाब देना चाहते हैं कि मौसम बड़ा सुहावना है और रोज़ दिन में कम से कम 5, 6, 10 दफ़े बारिश दस्तक देती है और पूरा शहर भिगो करके चली जाती है। ठंडी हवाएं चल रही है और आसमान पर फिलहाल बादलों का कब्जा है। तो ये मुंबई शहर का मौसम है। अगर आप घूमना चाहें या देखना चाहें इस शहर को, तो मौसम वाकई अच्छा है। अब एक साथी की बात है कि सोचो, सवाल न होते तो दुनिया कितनी खाली खाली होती। सवाल हमारा रास्ता प्रशस्त करते हैं और जवाब हमें आश्वासन से भर देते हैं। सवाल तो एक खाली पन्ना भर है जिस पर हर जवाब वो पन्ना भर देता है। कुछ जवाब हमें जीवन में सबक के रूप में मिलते हैं तो कुछ सवाल अनुत्तरित ही रह जाते हैं। परिपक्वता की पहचान यह नहीं है कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि यह है कि आप जानते हो कि किस सवाल का जवाब देना जरूरी है और किस सवाल पर चुप रहना जरूरी है। जी हाँ, यही परिपक्वता होती है कि किस सवाल का जवाब दें, क्या जवाब दें और कितना बोलना चाहिए, कितना जवाब देना है, इसी को परिपक्वता कहते हैं। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सवाल कभी ख़त्म नहीं होते, एक उत्तर से दूसरा प्रश्न जन्म लेता है। पूरा ब्रह्मांड हमारे ही भीतर की जिज्ञासाओं का एक आईना है। हम बाहर उत्तर खोजते हैं जबकि मूल प्रश्न हमारे भीतर ही जीवित रहता है। अनसुलझे सवाल जीवन की रिक्तता नहीं बल्कि उसकी निरंतरता का प्रमाण है। धन्यवाद देते हैं आपको। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। स्त्री फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर की आवाज, भरत व्यास के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

0: सी रामचंद्र।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: पर सही में उसका सवाल सही है या जवाब उसको खुद ही नहीं मिल पाता है। कुछ सवालों के जवाब तो मिले ही नहीं, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो सवालों से भी ज़्यादा दर्द देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को याद करें किसी काम के लिए और उसी का फ़ोन आ जाए और वो खुद ही उस सवाल का जवाब दे देते हैं जो हमने सोचा था, तो ऐसा भी होता है। चलिए, एक सवाल हमने आपके लिए भी सोचा है कि क्या आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और उसने उसे सवाल ठीक से समझ में नहीं आया और उसने जवाब कुछ इस तरह का दिया, तो जो सवाल और जवाब का तालमेल जब नहीं बैठता है तो वातावरण में एक हंसी का ठहाका लग जाता है और हम बोलते हैं, अरे हमने तो तुमसे ये बात पूछी थी, तुम तो जवाब कुछ और ही दे रहे हो। तो ऐसे भी कई बार परिस्थितियाँ आ जाती है। तो ऐसा कोई वाकया आपको याद आता हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए, अब तीन देवियाँ फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार और साथियों की इसमें आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एस डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

देवानंद और सिमी गरेवाल पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि अभी तो बादलों से मैं पूछ रही हूँ कि कब बरसोगे, सिर्फ आसमान का मेकअप मत करो, बरस भी जाओ। और एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों का सिलसिला ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत आदत है, क्योंकि हर सवाल एक दरवाज़ा खोलता है और हर जवाब 10 नए रास्ते दिखाता है। बचपन में ये क्या है से शुरू होकर बड़े होने पर मैं कौन हूँ तक पहुँचते पहुँचते हम सीखते हैं कि रुकना नहीं, जिज्ञासा बनाए रखना ही असली तरक्की है। सवाल हमें विनम्र बनाते हैं और हमें सुनना सिखाते हैं और हमें दूसरों की दुनिया में झांकने की हिम्मत देते हैं। बिना सवालों बातचीत बासी हो जाती है। जिस दिन मन से सवाल उठने बंद हो जाते हैं उसी दिन से समझ और जिज्ञासा भी नष्ट होने लगती है। इसलिए सवाल पूछते रहो, कोई सवाल करे तो उसके उचित जवाब देते चलो और आगे बढ़ते चलो। एक साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में कई सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं, यही अधूरेपन का एहसास और खोज की ये बेचैनी ही हमारी यात्रा का मुख्य हिस्सा बन जाती है। जीवन के अनसुलझे पहलू, कुछ पहेलियां कभी नहीं सुलझती, उत्तर न मिलने पर भी जीना ही अनुभव है। जीवन में कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब न तलाशना और अनिश्चितता को स्वीकार करना कई बार मानसिक शांति और आत्मिक सुकून बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका साबित होता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब अब्दुल्ला फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ या आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं?

संजय खान और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि एक बार हमारे चाचा जी ने हमारे छोटे भाई से पूछा कि भैया, यानी ये भैया शब्द उन्होंने पिताजी के बारे में कहा था, कि भैया के विवाह में आपने डांस किया था, तो उसने अपने बड़े भैया के विवाह के संदर्भ में हाँ कहा और सब लोग हंस पड़े और इस तरह से एक हंसी का माहौल बन गया। एक साथी लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है जब कुछ और सोच रहे होते हैं और कोई सवाल करता है तो हम बिना उसकी बात समझे जवाब दे देते हैं, बात बाद में समझ में आता है कि अरे मैंने तो ये गलत जवाब दिया, फिर सॉरी बोलकर सही जवाब दे देते हैं और सबके जवाब भी कितने अलग होते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिसाब के सवालों से डर लगता था, कभी गार्जियन कुछ कड़क की पूछे तो डर लगा, पर सबसे ज़्यादा डर लगता था जब शादी के पहले लड़कियों से लोग मिलने जाते और तरह तरह के उटपटांग सवाल एक पर एक दाग देते हैं तो ये बड़ा अजीब लगता है। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं, जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? जवाब। वक्त, ये वक्त का राजा होता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज़्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। चलिए धन्यवाद आपका, और अब हम आपको नवरंग फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ें, भरत व्यास के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत, महीपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना है।

तू छुपी है कहाँ, महिपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल जवाब ही संसार नहीं होते, पशु और पंछी जो कि बेजुबान होते हैं वो भी संसार में होते हैं। इनका कहने का मतलब ये कि बिना सवाल और बिना जवाब के भी संसार चलता रहता है। अब देखिए भाई, पशु और पंछियों की जहाँ तक बात है तो उनमें भी हो सकता है कई तरह के सवाल इशारों से होते हों जो हमें समझ में ना आते हो, ये भी हो सकता है। ये एक सवाल है, हो सकता है ऐसा। चलिए, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नए देश, नया परिवेश, नए दृश्य, अलग अलग रहन सहन पूछना ही पड़ता है। मैं बर्लिन में हूँ और बहुत कुछ नया देख रही हूँ और सवाल भी करती रहती हूँ कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ है। इस तरह के सवाल मन में आते हैं और जवाब मिलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों और जवाबों की मरीचिका जीवन में अंतहीन खोज, असंतोष और भ्रम का एहसास कराती है। जिस तरह रेगिस्तान में पानी की चमक देखकर इंसान भागता है पर वहां कुछ नहीं मिलता, वैसे ही जीवन में एक जवाब मिलते ही एक सवाल खड़े हो जाते हैं और जवाब अंतिम जीवन में एक जवाब मिलते ही एक सवाल खड़े हो जाते हैं और जवाब अंतिम सत्य नहीं है मगर असल में एक नया सवाल होता है। जवाबों की खोज की तृष्णा है जो नए सवालों की जनक होती है। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आशिक फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। मुख्य कलाकार कौन है फिल्म में ये बताइए।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हम सुनेंगे। एक साथी की ये बात आपको पढ़कर सुना देते हैं कि नवरंग फिल्म का जो हमने गाना सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि इस गाने में शहनाई और बांसुरी बजाई संगीतकार रामलाल ने, जबकि फिल्म का संगीत दिया सी रामचंद्र ने। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर सवाल का कोई न कोई जवाब होता ही है, चाहे मौन ही क्यों ना हो, अनुत्तर रहकर हम परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। इंसान चाहे कि कोई उससे बात करे या उसके प्रश्न का उत्तर दे, क्योंकि लोग बात करना चाहते हैं पर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला और अंतिम गाना शोला और शबनम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में, कैफी आजमी के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: शोला और शबनम में इस फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत खय्याम का। एक साथी के इस बात के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। लिखते हैं कि पक्षी भी अपनी भाषा में सवाल पूछते हैं। जी मेरे साथ हुआ था, बुलबुल पक्षी जो रोज दाना डालती थी, एक दिन व्यस्त थी काम में तो वो मेरे आसपास बार बार मंडरा रहा था और अलग सी उग्र सी बोली में मानो मुझसे सवाल पूछ रहा था कि आज अपुन का दाना किधर है। तो देखिए पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। चलिए धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, प्यारी प्यारी बातों के लिए। और गीतों को आपने ध्यान से सुना, उसके बारे में लिखा, सवालों के जवाब दिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, भारतीय नारी के 16 श्रृंगारों में पायल यानी पाजेब का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कविगण नायिका के नक्श सौंदर्य वर्णन में पायल का वर्णन आलंकारिक और कोमल कांत शब्दावली में करते हैं। पायल की झनकार न सिर्फ वातावरण को अनुरागमय कर देती है, बल्कि मधुरता और स्नेह से भर देती है।

भारतीय संस्कृति में पायल की रुंझुन ध्वनि में नारी के सौंदर्य के साथ उसकी सरलता, लज्जा और गरिमा का

भी समन्वय दिखाई देता है। पायल की मधुर झंकार प्रेम, सौंदर्य और संवेदनाओं को मर्यादित रूप में अभिव्यक्त करती है। नायिका के चरणों की गति की तीव्रता से आंदोलित होती पायल प्रिय मिलन की आशा तो जगाती है, किंतु लोकलाज से विचलित भी करती है। ऐसी भावना तो ब्रजवासिनी राधा के मन में भी उठती होगी।

0: पायल की छम छम वातावरण में ऐसी मधुरता भर देती है मानो प्रकृति भी स्वयं उस सौंदर्य का स्वागत कर रही हो। बिना कुछ बोले पायल की झंकार ही प्रियतम को अपने आगमन की पूर्व सूचना दे देता है। पायल की रुनझुन हृदय से हृदय के बीच का पत्राचार ही तो है।
1: छम

पायल नारी सौंदर्य की अभिव्यक्ति में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। पायल सौंदर्य और प्रेम को कलात्मक एवं सौम्य रूप में अभिव्यक्त करता है। तभी तो कवियों ने इसकी रुंझुन की तुलना वीणा के मधुर तानों से की है और इसे हृदय की मौन भाषा की भी संज्ञा दी है। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: वी हैव अबाउट 80 कंपनीज।
2: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: ओनली टू रिफ्लेक्ट दैट अ वाइड डाइवर्सिटी जॉइंड दिस डेलीगेशन।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
3: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Special Bima Yojana, Kishan Credit Card schemes and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, on farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
4: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक

0: मंच प्रदान करती है जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
2: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
3: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
1: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना पीएमएफएमई से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज पीएमएफएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
4: पीएमएफएमई की हमारी स्कीम जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने एमओयू साइन किए हैं अपीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप

0: से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और जीसीसी के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंडी इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गीतकार हैं हसरत जयपुरी। फिल्म का नाम है जिंदगी।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है जिद्दी।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपके आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। नगमा निगार है राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार है मदन मोहन, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे लिखा है फारूक कैसर ने, धुन है जीएस कोहली की, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है शिकारी।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अगले गीत में। बोल है राजेंद्र कृष्ण के, तर्ज है रवि की, फिल्म का नाम है शहनाई।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत कौर की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं खयाम, फिल्म का नाम है शगुन।

लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को, गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना चित्रगुप्त की, फिल्म का नाम है मेरा कसूर क्या है।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अनवर, संगीत है उषा खन्ना का, फिल्म का नाम है शबनम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: की सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सखाओं, सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा
2: और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। चंचल जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ और इस मंच पर बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं और ये मुलाकात भी बहुत अच्छी है।
2: बिल्कुल, मुलाकातें अच्छी होती है तो अच्छा लगता है कि, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन में कुछ उथल पुथल चल रही होती है, कुछ मुश्किल हालात होते हैं और कई बार बोलने का मन भी नहीं करता है, लेकिन कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। एक जो जीवन एक मंच की तरह होता है, रंगमंच की तरह होता है, तो यहाँ खेल खेलते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। तो मुश्किलें आएंगी जाएंगी, लेकिन उससे डरे नहीं, हारे नहीं, और अपना काम जो है अपने मन को स्थिर रखते हुए करते रहना पड़ता है।
1: कई बार मुश्किल वक्त में हम लगता है कि रुक जाएं या गिव अप कर देते हैं ना, हार मान लेते हैं, तो वहीं वो थम जाता है। और पानी भी जब तक बहता रहता है वो साफ रहता है, जहां वो रुकता है वहां उसमें काई जम जाती है। तो इसी तरह से हमें हमारे मन के अंदर भी वो नकारात्मकता जो है वो घर करने लगती है, इसलिए डरना नहीं है। और एक समय आने के बाद हमें लगेगा कि ये जो मुश्किल वक्त आया था ये हमें बहुत कुछ सिखा कर गया।
2: बिल्कुल, थोड़े से उपाय होते हैं जो हम कर लें तो ये जो मुश्किल समय होता है आसान हो जाता है। अब वो उपाय क्या है, बातें क्या है, वो तो हम बाद में जब विषय पर बात करेंगे तभी आपको बताएंगे। लेकिन
1: और हमारे सुनने वाले भी तो अपने अनुभव बताएंगे, अपनी बातें हमारे साथ साझा करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स उनके आएंगे।
2: हाँ बिल्कुल, तो आज जो विषय है उनके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले तो कथा सुधा की बात करते हैं। कहानी है छह आने का टिकट,
1: इसका पहला भाग।
2: जी हाँ, आज सुनेंगे आप। देखो, अब इस जमाने में अगर हम छह आने के टिकट की बात करें तो क्या हमें कुछ सत्यता लगती है इसमें?
1: नहीं लगती है। हाँ। और आजकल के जमाने के जो बच्चे हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं, जिनकी उम्र 15 से 16 साल होगी, उनको तो आने के बारे में पता भी नहीं होगा कि आना कैसा हुआ करता था। लेकिन इन कहानियों का अस्तित्व, इनका जो मर्म है, इन्हें अगर हम समझेंगे ना तो इनकी सीख कहीं भी कोई पुरानी नहीं है। सिर्फ एक आने का उनको समझ नहीं आएगा कि आना क्या होता है। तो हर मुद्रा होती है एक तरह की, रुपया पैसा जो भी है, ये आना भी पहले चला करते, रत्ती आना दो आना, ये सब वही मुद्राएं हैं।
2: बिल्कुल, और दूसरा जो विषय है, मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, ये विषय है जिस पर हमने अभी थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा अभी कर ली है।
1: और हम करते हैं सोमवार के दिन प्रादेशिक व्यंजनों की बात। तो अगस्त के महीने में जिस प्रदेश के व्यंजन की चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी सखियां हमसे जुड़ रही हैं इनको लेकर, ये है पश्चिम बंगाल की, जो भी बहुत चटपटी, मीठी, खट्टी और बहुत ज्यादा जो कहते हैं कि चर्चित रेसिपीज हैं, उनकी बात।
2: तो आज लाबरा और रसगुल्ला, ये जो दो मिठाइयां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी कि लाबरा जो है वो मिठाई नहीं है।

0: हाँ
1: रसगुल्ला तो मीठी चीज है, लेकिन
0: बिल्कुल
1: लावरा एक ऐसा व्यंजन है जो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, यानी कि सब्जियों का मिश्रण है।
0: अच्छा
1: तो हर जगह सब्जियां बनाई जाती हैं और मिश्रित सब्जी का जो रूप है वहां उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बंगाल में जब भी मिश्रित सब्जी बनाई जाती है तो उसका नाम है लावरा। और ये कुछ खास अवसर होते हैं, खास तौर पर नवरात्रि में जो पूजा होती है दुर्गा पूजा, उस समय और ऐसे खास मौकों पर ये बनाई जाती है। तो हमारी जो सखियां इसके बारे में जानती हैं, इसकी रेसिपी के बारे में जानती हैं, इसके बारे में कुछ भी सुना है, और रसगुल्ला भले वो बंगाल का हो
0: हाँ।
1: लेकिन सुनते ही पानी तो सबके मुंह में आ जाता है।
0: बड़ा मुलायम मुलायम सा
1: हाँ
0: और रुई के जैसा लगता है और स्पॉन्जी होता है, और जब उसको हाथ से निचोड़ो तो बहुत सारा रस उसमें से टपकता है। अब
1: जी
0: जिसको जितना मीठा पसंद है उतना रस में डूबा हुआ रसगुल्ला वो खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। अगर कम मीठा है तो थोड़ा ज्यादा निचोड़ दीजिए उसे और
1: और भाई
0: पिसा
1: आपको
0: लीजिए।
1: मिठास लेनी है, आपको लगता है कि भाई इन इन चीजों से कहीं ना कहीं सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, तो संगीत की मिठास अपने जीवन में घोलिए।
0: बिल्कुल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
5: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
6: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
5: हाँ।
6: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
5: हाँ।
6: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
6: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
7: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
8: राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह की भाषा शैली हास्य प्रधान है। दिल्लगी पसंद कवि अपने व्यवहार से और बिना किसी को नाराज किए हुए अपने मन का और अपने लाभ का काम करवा लेता है। वाक्पटुता के साथ कवि संपादक से हर फायदा लेता है। संपादक चिढ़ता है लेकिन बच नहीं पाता है, बल्कि हर बार खुद फंस जाता है। कहानी में लेखक को विनोदी स्वभाव का चतुर और बेबाक दर्शाया गया है। पैसे की बचत के लिए तरह तरह के उपाय करना और फिर उनका असफल होना कहानी की रोचकता बढ़ाता है। अंत में लेखक ने कहानी को एक अलग मोड़ दिया है। तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी 6 आने का टिकट। आइए सुने इस कहानी का पहला भाग।
9: उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ये सज्जन अपने पैर मेज पर रखे हुए गुनगुना रहे थे और कभी कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन भी लिख देते थे। अब यहां यह बतला देना अनुचित न होगा कि मैंने एक लेटर पैड 3 रंगों में छपाया था और हरेक पन्ने की लागत 2.5 पैसे पड़ी थी। वे मझोले कद के मोटे से आदमी थे, चेहरा किसी कदर गोल मटोल, ऊबड़ खाबड़ और भद्दा। उनकी मूंछें आधी और अच्छी तरह से छंटी हुई थी, आंखें बिल्ली की तरह, बिजली के पंखे की हवा में उनके बाल फहरा रहे थे और ये बतला रहे थे कि ये सज्जन काफी मौज में हैं। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज के पास पड़े हुए तख्त पर मैं बैठ गया, ये समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पुलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकुड़ा हुआ, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हिंदी वालों को यह सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूं, मक्कार हूं, मूर्ख हूं। उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा, शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे पूछा,
10: क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं?

0: बहुत विनय पूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हाँ।
1: और संपादक किशोर जी कब आते हैं?
0: कोई समय तो उनका ठीक नहीं है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं?
1: जी जी जी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूँ। वो सामने मेरा असबाब रखा है, मेरी उनकी मित्रता है, सोचा कि मिलाऊं और चला आया। वैसे वो रहते कहाँ हैं?
0: और वास्तव में उनका ट्रंक और बिस्तर वहीं रखा था। उनके असबाब को देखकर मैं घबराया, लेकिन जब उन्होंने मेरे मकान का पता पूछा तो मैं मर्माहत सा हो गया। मैंने कहा, जी रहते तो वे यहां से करीब 10 मील की दूरी पर हैं, लेकिन शायद आजकल वे यहां नहीं हैं। 1 हफ्ते बाद उनके लौटने की खबर है।
1: अरे, वो यहां नहीं है क्या?
0: नहीं नहीं
1: ओहो, खैर दफ्तर तो है, यही रहूंगा। 1 हफ्ता कोई बड़ी बात नहीं है, इंतजार कर लूंगा।
0: ये वार खाली गया। मैं सोच ही रहा था कि अब दूसरा वार कौन सा हो कि मेरे सहकारी श्रीराम ने प्रवेश किया। आते ही उन्होंने कहा,
2: नमस्कार किशोर जी, आज जरा देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा।
0: मेरे सहकारी की बात सुनते ही उठकर खड़े हो गए। बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा,
1: आप ही किशोर जी हैं
0: जी,
1: आपने तो खूब दिल लगी की। आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
0: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ हाँ हाँ हाँ, आपका इस कुटिया में स्वागत है, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम जी, आपके ठहरने का प्रबंध छेदीलाल जी के धर्मशाला में करा दें। हाँ सुनिए, कमरा अच्छा होना चाहिए और एक बात का ध्यान
1: रखिए। जी जी जी जी, धर्मशाले में ठहरना मैं कभी पसंद नहीं करता
0: जी।
1: चोरों और बदमाशों का वहां जमघट रहता है।
0: अच्छा।
1: और मैं इसी दफ्तर के अतिथि गृह में ठहर जाऊंगा।
0: क्या?
1: उससे आपकी सेवा करने का मुझे पूरा अवसर प्राप्त होगा।
0: मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए कमरा है, इसे कैसे पता चला? उफ, खैर। 4 दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तरा तथा ट्रंक रखा है।
1: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता, लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
0: जी?
1: जी जी जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
0: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं, लिहाजा अब श्री राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखते

0: लगते थे। एक दिन दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा,
1: किशोर जी,
0: हाँ हाँ बोलिए,
1: आज इच्छा होती है कि कलकत्ता घूम आऊं।
0: हाँ, बड़ी प्रसन्नता की बात है।
1: जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए।
0: वो तो मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे।
1: वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका उपयोग करते हैं, मैं क्या मूर्ख हूं जो पकड़ा जाऊंगा।
0: ठीक है। और उस दिन वो मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा।
1: किशोर जी, वो ट्राम का टिकट दीजिए ना।
0: राम खिलावन जी, मुझे बड़ा दुख है, ट्राम का टिकट मुझसे मेरे एक मित्र लेकर गए हैं।
1: ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उनके आने पर चला जाऊंगा।
0: और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर मुझे भेजना पड़ा। उस दिन 12 आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और मैंने फिर वही बहाना बना दिया। पर उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला, बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस करे। लिहाजा रोज का अब मेरा यह दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
1: किशोर जी
0: जी,
1: आज तो आपकी छुट्टी है।
0: हाँ,
1: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
0: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है। अरे भाई भीखू, देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, और 2 6-6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया। ठीक है?
1: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट, मैं अकेले ही घूम लूंगा।
0: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रखकर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
1: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
0: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का पहला भाग, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ, वो रात को घर क्यों नहीं लौटे, क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है, राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

अभी आप सुन रहे थे कहानी छह आने के टिकट का पहला भाग, और आपको इस कहानी का अंत क्या होता है जानने के लिए दूसरा भाग सुनना होगा। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: वो सबसे पहले हमसे दूर होने की, कटने की या बचने की तरह तरह की कोशिश करते हैं, और ऐसे समय में दोस्तों से मिलना, परिवार के लोगों से बात करना, प्रार्थना करना, ये तमाम जो बातें हैं ना, ये फालतू नहीं बल्कि ये हमें ईंधन का काम करती हैं और हमें बहुत सारी ऊर्जा देती हैं।
3: लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मुश्किल समय आता है तो हमारे अपने ही लोग हमसे बचने और कटने की कोशिश करते हैं, तो हम दोस्तों से कैसे मिले फिर, ये भी तो एक सवाल है। तो खैर, लेकिन सब लोग तो वैसे नहीं होते हैं ना, तो जो भी हमारे जीवन में है, जो हमारे प्यारे से दोस्त हैं, जो हमारे हितेशी हैं, उनसे हमें मिलना चाहिए। और अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की मदद हम मांग सकते हैं, बशर्ते कोई हमारी मदद करे, है ना। ये कोई कोच या मेंटर या दोस्त या प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकते हैं, जो लोग पहले ऐसी किसी मुश्किल से निकल चुके हैं उनसे भी अपने मुश्किल से उबरने का रास्ता पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं जो रास्ता दिखाए या फिर हमारी मदद करे, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उन्हें संभाल कर रखिए, और जब अगर ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी जो तकलीफ है उन्हें बताइए, और हो सकता है कि वो आपकी तकलीफ को प्यार से सुने और उसको उसका कोई हल निकाले।
2: और जैसा भी आपने कहा ना कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप खुद जरूर किसी के लिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए कि आपसे जब कोई मदद मांगे तो आप उस समय किसी तरह की नानुकुर ना करें, कोई नखरा ना करें, या अपनी जो कहते हैं ना कि प्राथमिकता दिखाने की कोशिश ना करें। आप उनके लिए अगर काम आएंगे तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए जरूर किसी दिन काम आ सकते हैं। और किसी भी तरह की जीत अगर हमें हासिल होती है किसी काम में तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हमारे लिए ये समस्या बड़ी नहीं थी या मुश्किल बड़ी नहीं थी या वो हमेशा के लिए गायब हो गई है। जीत का मतलब है कि हम जो भी मुश्किल हमारे सामने थी उसके सामने हम झुके नहीं, डरे नहीं, उससे घबराए नहीं, और हार तो हमने कतई नहीं मानी। हम हर दिन उठें, गिरें और फिर से उठकर एक दिन खड़े हो जाएं, लेकिन जब हम एक दिन मुड़कर पीछे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस मुश्किल ने हमें हराने की बहुत कोशिश की थी आज उसी ने हमें बहुत मजबूत बना दिया।
3: ये सही बात है कि जब हम मुश्किलों में घिरते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, तो वही चीजें हमारी मजबूती बन जाती है। और जब भी लगे कि मुश्किल ज्यादा भारी हो रही है तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक एक छोटा कदम ही बड़ी जीत बनता है। तो मुश्किलों का क्या है, ये तो रोज आती है या जीवन में कई बार आती है, पर इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं तो मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है और हम उसके सामने छोटे
2: छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा।
3: यानी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप मन से जीत जाते हैं तो उस मुश्किल से उबरना भी आपके लिए आसान हो जाता है।
2: और कई बार समस्या भले छोटी सी हो लेकिन हाय हम क्या करें, ये हो गया वो हो गया, ये कह कह कर ही हम उस समस्या को मुश्किल
3: और बड़ा बना लेते हैं, और बोलने से तो मुश्किलें हल होंगी भी नहीं, उसका कोई हल निकालना पड़ेगा और उस ओर हमें कदम आगे बढ़ाना होगा।
2: तो हम मुश्किल या समस्या की बात करने की

0: बजाय हर बार समाधान की बात करेंगे, हल निकालने की बात करेंगे ना, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। और मुश्किलें जो आती हैं वो हालातों से सबक लेने के लिए एक सिग्नल की तरह होती हैं, कोई सजा नहीं होती। बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें बताती हैं कि हमें कहाँ सीखना है, हमारे आसपास जो भी सिस्टम या जो चीजें चल रही हैं उन्हें किस तरह से बदलने की जरूरत है। अगर हर बार रास्ता बंद होगा तो नया रास्ता कैसे है ये भी हमें ढूंढना होगा, और यही गुण बाद में हमारी ताकत बन जाता है।
1: बिल्कुल, और कई बार हमारा दिमाग किसी खतरे को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। इसलिए पहले जो 5-7 मिनट में जो डर लगता है वो अक्सर असली नहीं होता। इसलिए थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर समाधान खोजना भी आसान होगा। यानी सोचे समझे फिर आगे कदम बढ़ाए। कई बार लोग बहुत हड़बड़ी में आ जाते हैं, थोड़ी सी मुश्किल सामने दिखी घबरा जाते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, और कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी तबीयत वहीं की वहीं बिगड़ जाती है। अब अगर ऐसे हालात हो गए तो आप मुश्किल का सामना करेंगे ही कैसे?
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो जाता
0: और
1: है।
0: कई बार जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर लेती, क्योंकि हम पूरी पूरी रात उन चिंताओं में घिरे सोते ही नहीं है। तो जरूरी है कि आप भरपूर नींद लीजिए, 20-25 मिनट थोड़ा सा वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। अपने जो नियर डियर, आपके जो भी जिनसे आपके प्रेम पूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार हैं, आपके चाहे वो पड़ोसी हैं, परिवारजन हैं, दोस्त हैं, उनसे अपने दिल की बात कहिए। और ये चीजें हमारे लिए इमोशनल इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, और इनके होने पर हमारी मुश्किलें आती भी हैं तो वो तोड़ती नहीं है। क्योंकि अगर एक कोई ऐसा है हमारे जीवन में जो हमें कह दे कोई नहीं, मैं हूं ना साथ में,
1: बिल्कुल
0: मैं हूं ना, तो ये जो मैं हूं ना जो छोटा सा शब्द है ये बहुत बड़े हौसले का काम करता
1: बिल्कुल
0: है।
1: हमें संबल देता है और हमें लगता है कि हम अकेले नहीं है, अब कोई है हमारे साथ जो हमारी मदद करेगा। और घबराने के बजाय थोड़े से जगह अगर आप जिज्ञासु बन जाए और बुझो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और समझो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। हर मुश्किल के बाद 2 चीजें मिलती है, एक घाव और एक हुनर। तो घाव तो भर जाता है लेकिन हुनर जो होता है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। और इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले से तैयारी कर, जैसे हम खाना बनाते हैं ना चंचल, तो खाना हम भोजन करते हैं 1 बजे, हम बनाना शुरू करते हैं 12 बजे, लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो हम पहले से, सब्जी हम 1 दिन पहले लाके रख देते हैं, दालें लाके रख देते हैं, आटा पहले से, और उसको बनाने के लिए तो आटा मलने का काम हम थोड़े समय पहले कर लेते हैं, सब्जी काट के रख लेते हैं, तो ये एक तैयारी होती है। इसी तरह एक मानसिक तैयारी भी होती है, तो वो तैयारियां अगर हम पहले से करेंगे तो इन चीजों का असर कम होगा।
0: बिल्कुल, कहने का अर्थ यही है मंजू जी कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, पर हम हर मुश्किल के साथ थोड़े और शांत, थोड़े और तेज, थोड़े और समझदार, इस तरह से होते जाएंगे। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो मुश्किलें किसी समय हमें बहुत बड़ी पहाड़ लग रही थी ना, वो हमारी सीढ़ियां बन जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और एक गीत सुनते हैं, बाद में हम देखेंगे कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी जो बातें लिखी हैं वो क्या हैं।

0: तो भाई खता तो होती है किसी ना किसी की, लेकिन हम उन्हें दोष देते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। अपनी जो मुश्किलें हैं उनके हल हमें खुद निकालने।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बड़े सजग हैं और विषय को जैसे ही वो पढ़ते हैं तो अपने बहुत सारी जो बातें हैं, मन की बातें हैं, वो लिख भेजते हैं, या फिर जो जितना नॉलेज या जो ज्ञान उन्हें है उस बारे में तो वो लिखते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, मुश्किलें किसी को बताकर नहीं आती और ये हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सकारात्मक दृष्टिकोण, यह पंक्ति हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनके प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें। डर हमारी आधी ताकत को खत्म कर देता है, निडर रहकर ही हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।
0: बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। और इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता ने भी बड़ा अच्छा संदेश भेजा है। उनका कहना है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मुश्किल समय आता है तो अक्सर लोग भविष्य की चिंता में डर जाते हैं। ये पंक्ति हमें सचेत करती है कि डरने से समस्या बड़ी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद घुटने ना टेक दें। इतिहास गवाह है कि महान वही बना है जिसने अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ा। और ये बहुत सारे जो उदाहरण देकर बता रहे हैं, जो सफल व्यक्ति हैं,
1: बिल्कुल महान
0: उन्होंने
1: व्यक्ति जो हुए हैं,
0: हाँ,
1: उनके
0: उन्होंने
1: बारे में
0: सफलताओं के बाद हार नहीं मानी, इस तरह के मंत्र को अपनाया, तभी वो सफल हो सके।
1: हाँ, एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आनी तय है लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का नया रास्ता सिखाती है। हौसला रखें और डटकर मुकाबला करें। जीत हमेशा हिम्मत की होती है। मुश्किलों से लड़ने के धैर्य लिए धैर्य बहुत बड़ा हथियार

0: होता है, कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहें और सोच समझकर कदम उठाएं। हर मुसीबत अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। मन में पॉजिटिव विचार रखें, लगातार प्रयास करते रहें। परिवार, मित्र, रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर सलाह या सहायता लें।
1: एक अन्य संदेश में कहा गया है कि हर गलती और बाधा से हमें सीख मिलती है, संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता बहुत मीठी होती है। मुश्किलों से घबराए नहीं, शांत रहकर सोचें। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन ये विश्वास रखिए और कदम पीछे न हटाएं, लगातार प्रयास करते रहें।
0: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, रहें कितनी भी कठिन हो, मंजिल के जिद पर अड़े रहना, तूफानों से आंख मिलाकर बस आगे बढ़ते रहना। मुश्किलें तो महज इम्तिहान है, पर ये परखती हैं कि अपना इरादा, ये हमें परखती है अपना इरादा न छोड़ना। कितनी मतलब मन को संबल देने वाली बातें हैं ना। और मुश्किल समय में ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो इस तरह की बातें कहकर हमारे हमारी हौसला अफजाई करे।
1: कुछ कहानियां हमें हौसला देती हैं, लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो भी हमें हौसला दे जाती हैं। उन्हीं का उदाहरण देकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान राम तक इन चीजों से, मुश्किलों से बची नहीं। 14 साल उन्होंने वनवास के काटे, लेकिन दुख में वो विचलित नहीं हुए।
0: बिल्कुल सही बात है। इन जो कहते हैं ना कि हम अपने इतिहास से तो बहुत सारी चीजें, बहुत
1: जी
0: सारी बातें सीख सकते हैं। चलो अब हम थोड़ी खान पान की बातें करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हमने बोला कि प्रादेशिक व्यंजन के अंतर्गत आज बंगाली व्यंजन की हम बात करेंगे, तो लाबरा ये एक व्यंजन है और दूसरा है रसगुल्ला। तो सबसे पहले लाबरा के बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी ने इसकी विधि हमें लिख करके भेजी है कि सब्जियों को तैयार करें, सभी सब्जियों को धोकर मीडियम या बड़े टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और बैंगन, कद्दू, कच्चा केला, मूली, परवल और गोभी को अलग अलग हल्का सुनहरा होने तक इसको शेलो फ्राई करके बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद तड़का लगाएं, बचे हुए तेल में थोड़ा और सरसों का तेल मिलाएं। तेल गर्म होने पर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन डालें। सब्जियां और मसाले पकाएं। अब कढ़ाई में आलू, शकरकंद, पपीता और अन्य कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर भुनें। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। पहले से फ्राई की हुई सब्जियां और पिसा हुआ नारियल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आधा गिलास पानी डालें और डालकर दोबारा ढक लें ताकि हरी सब्जियां पूरी तरह नरम हो जाए। जब सब्जियां पक जाए तो नमी को संतुलित करने के लिए एक चुटकी गेहूं का आटा छिड़क कर मिला लें और गैस बंद कर दें। और अंतिम चरण जो इसका है वो ये है कि अब इसमें तैयार किया हुआ खास भाजा मसाला पाउडर और एक चम्मच शुद्ध घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका पारंपरिक बंगाली लाबरा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल या भोग की खिचड़ी के साथ परोसे।
1: और कोई भी व्यंजन है वो तभी अच्छा बनता है जब वो संतुलित मात्रा में सारे मसाले डाले जाते हैं। और कार्यक्रम का संतुलन बनाए रखने के लिए गीत जरूरी है।

0: तो हम लबरा और रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे। रसगुल्ला के बारे में हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि ये भारत की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्पंजी मीठी मिठाई है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल और ओडिशा क्षेत्र से मानी जाती है। और इसके इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एक जिन व्यक्ति जिन्होंने बनाई सबसे पहले उसके उनका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी लिखा है कि इसे ताजे छेने यानी कि जो फाड़ा हुआ जो दूध होता है उससे जो
1: जी
0: पनीर बनाया जाता है उससे ये बनाई जाती है, और चीनी की चाशनी से तैयार किया जाता। ये गोल हल्के और स्पंजी टेक्सचर वाला तथा रस से भरा होता है और मुंह में जाते ही ये घुल जाता है।
1: हमारे एक अन्य श्रोता ने भी यही बताया कि ताजे दूध को फाड़ कर छेना तैयार किया जाता है, उसे हल्की सी चाशनी में उबाल कर ये बनाया जाता है। स्पंजी नरम और रस से भरपूर होता है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी इसका मूल स्थान है ऐसा कहा जाता है। ये
0: हाँ
1: बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। तो बात हुई ये रसगुल्ले की, और ऐसा ही मीठा मीठा सा एक गाना सुन लेते हैं चलते चलते।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और देखिए चले जाना किसी का दम निकलता है,
1: जरा
0: कभी
1: ठहरो, लेकिन ठहरने का समय नहीं है
0: नहीं
1: ना।
0: है, जाना है लेकिन किसी का दम निकाल के नहीं जाना है हमें। तो आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से जो हमारे प्रोग्राम है उसमें रेसिपी बताई जाती है वो सुनिए और बनाइए, खाइए और मस्त रहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं आप सभी को। मंजू द्विवेदी
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: सेहतनामा।

0: श्रोताओं, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार पर बातचीत। आजकल बालों की समस्याएं आम तौर पर नजर आती हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रचिता धूरत को। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, सेहत नवा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अमूमन हम अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कई बार अगर कोई समस्याएं हो जाती हैं। और इसी तरह से एक बड़ा हमारा कंसर्न होता है अपने बालों को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचिता धूरत जो डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। ये इतने से काम नहीं चलता कि मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल दूं। थोड़ा अपने बारे में, अपनी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी दीजिए।
2: मेरी बेसिक विशेषज्ञता ये है कि मैं प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ स्किन डिपार्टमेंट एट LTMG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और साथ में मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है। और बेसिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ हमारा हेयर और हेयर भी साथ में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं। और अभी मेरा ग्लोबली नाम हुआ है कि मैं संशोधन करती हूँ, पब्लिकेशन करती हूँ, तो कुछ नए नए तरीके हम हेयर में स्टडीज करते हैं। तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत सारा मैंने किया हुआ है
1: क्या
2: ये माध्यम से।
1: तो ये जो बालों को लेके आपकी रिसर्च है ना, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है और हम इसी पर बात करते हैं, है ना। जो इस समय में सोशल मीडिया के जमाने में आप ये देखेंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है लेकिन सलाह देने की फैक्ट्री बन गए हैं। वो रील्स बनाते हैं और तरह तरह की सलाहें देते हैं कि ये ऐसा कोई मिश्रण बना के बाल में लगा लो, ये तेल, इसमें ये चीजें डाल दो, ये कितना खतरनाक लग रहा है। यहां से बातचीत शुरू करते हैं।
2: बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है
1: लेकिन बतौर विशेषज्ञ ये आपका हक है कि आप लोगों को जागरूक बनाएं और सावधान करें।
2: अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट 20,000 से 22,000 है, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डर्मेटोलॉजिस्ट 1,00,000 के ऊपर है तो इस पर से
1: आज
2: समझ
1: ज्यादा है।
2: यस
1: जी जी।
2: तो हर अपने अपने तरीके से सलाह देता है। आप जो सलाह लेता है और अमल करता है उसने सोचना चाहिए कि ये सलाह सही है या गलत है, कि बहुत बार फर्क नहीं समझता है कॉमन लोगों को। तो देने वाला कौन है वो देख के आप वो सलाह को अमल कीजिए। कि बहुत बार जैसे जमाल गोटा का बहुत सारा वायरल वीडियो आया था, एक पूरे हॉल में 100 लोग बैठे हैं जो एलोपेशिया के एरियाटाइटिस के शिकार है और जमाल गोटा लगाने के लिए, पर वो नहीं देखते एक पेशेंट को अगर रिस्पांस आया लेकिन 99% पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर वो आपको 99% के साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, वो 1% वाला रिजल्ट आ जाएगा वो दिखाएगा। जमाल गोटा एक इरिटेंट है। इरिटेंट के वजह से कभी हेयर ग्रोथ हो सकती है, पर इसका जरूरी नहीं कि सेफ्टी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें,
1: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते।
2: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते।
1: तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि इस तरह की रील्स आप देखते जरूर हैं,
2: हाँ,
1: पर थोड़ा संभाल के।
2: बिल्कुल, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा
1: बहुत संभाल के बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वो जो आप स्क्रॉलिंग करते चले जाते हो तो आपका ध्यान आता है, अच्छा विटामिन D3 कम है तो ये खाना चाहिए, ठीक है वो ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं।
2: सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुहासे जब होते हैं
1: जी,
2: आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक लगाइए, वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है।

0: परमानेंटली डैमेज होने का मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा.
1: यस, काफी बड़ा हो जाएगा
0: जी. आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जड़ा थोड़ा खतरनाक सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहां जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा.
1: बिल्कुल.
0: तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए. मैं कर दूं?
1: आप कर दीजिए.
0: हम सब उस्ताद हैं. फिल्म का गाना है क्या तेरी जुल्फे हैं.
1: हाँ.
0: इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम.

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: क्या तेरी जुल्फें हैं?

0: अच्छा आप बताइए कि इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं?
1: हेयर फॉल, हेयर शेडिंग। आजकल की जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है। मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है। और जब बाल में टक्कल, बालनेस दिखाई देता है, तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है।
0: जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता
1: तो ये
0: है।
1: बालनेस कभी दिखाई देता है। 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं तभी बालनेस दिखाई देता है।
0: ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई।
1: बिल्कुल। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जो दिखाई देता है, तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं। तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतना जल्दी बेहतर रहता है।
0: आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे पहले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है, तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है?
1: तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत में बताती हूं तो रफली 30, 40, 50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली एवरेजली, ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है। मैं नहीं मानती हूँ,
0: जी
1: क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके, तो महीने के कितने हो गए? काफी हो गए।
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल,
0: गणित की परीक्षा मत लीजिए मेरी।
1: 3 महीने के कितने हो गए? तो
0: जी
1: 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए,
0: चालीस
1: लगा
0: पचास
1: 40-50 लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं तो फिर अब नॉर्मल समझना चाहिए। आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं।
0: और पुरुषों में
1: पुरुषों में हेयर काउंट नहीं समझ में आता क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं, और
0: जी
1: जब आप हाथों में शैम्पू करते हो तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए जो पहले नहीं आते थे। कुछ दिन तक आ रहे हैं और महीनों तक आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम पर, तो एब नॉर्मल है,
0: ठीक
1: इसको
0: बात
1: नॉर्मल नहीं कहा जाता है।
0: जी।
1: तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपका हेयर में कुछ एनर्जी कम है या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, वेरी बहुत कॉमन चीज है, ये है या नहीं वो हम स्कोप के माध्यम से देखते हैं,
0: ये जो
1: जिसको
0: आपने
1: हम,
0: टर्म यूज की,
1: हाँ,
0: ये क्या है?
1: ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्नीफाई करता है कि उसमें थिन है परसेंटेज कितने हैं, वो देखा जाता है।
0: ब्लू कलर की रोशनी में।
1: नहीं, ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें, तो उसमें थिन है परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं। उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है, इंडिविजुअल बालों की मोटाई, वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है। दैट
0: जी
1: इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो ये जो इनिशियल साइन होता है, बहुत बार बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं, और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू। सिंपल चीज है, एक आपने को बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है, और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं,
0: बिल्कुल
1: तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, होते रहेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है, तो वो आहिस्ता जो आना है वो प्रमाण 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है।
0: जी बिल्कुल
1: जितना शेडिंग फास्ट उतना जल्दी गंजापन,
0: ये समझने की बात
1: ये
0: है।
1: समझने की बात है। तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है, और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूं कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग, वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ के।
1: नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है, ट्राइकोलॉजिस्ट एक
0: ओके
1: डिग्री नहीं है।
0: जी जी
1: हाँ, अभी क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं
0: ओके
1: तो उस पर मैं

0: आश्चर्य नहीं करना चाहती हूँ,
1: जी
0: लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है। तो ट्राइकोलॉजिस्ट बोलोगे, प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी द आइडियल डॉक्टर फॉर योर हेयर। यू हैव टू सी दैट उनको बैकग्राउंड डर्मेटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं।
1: जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं, 40 से ऊपर और 40 के नीचे।
1: बिल्कुल।
0: तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है?
1: वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है, जो 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीजें, बाल्डनेस कॉमन चीजें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होता है। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी के वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के विश्लेषण करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे हैं।
0: और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो पता लगाते हैं कि किसी विटामिन की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है।
1: बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में।
0: जी,
1: आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कमी होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सारी चीजें महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती है। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट का कुछ इश्यू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांस लग,
0: और उसका असर बालों पर जाता है।
1: बिल्कुल
0: जी। महिलाओं की बात आपने की तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में निभाते हैं, और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं, ये क्या मामला है ये बताएं।
1: महिलाओं में PCOD नाम सुना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है, तो यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अभी तो 20-30 इयर्स को भी PCOD हो जाता है, ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है
0: जी,
1: क्योंकि चलना नहीं है, गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल जो भी है। पहले के जमाने में हम लोग स्टेशन को जाने के चल के जाते थे, रिक्शा के पैसे बचाते थे।
0: बढ़िया बात, हमारा
1: चलना हो जाता था, बात बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है। तो PCOD और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है, और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होके उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीजें पूरी देखनी होती है कि PCOD है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: पहले के जमाने में था क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस?
0: नहीं,
1: 40 साल के 50 साल के लोगों को होता था, अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया।
0: जी, ये बहुत आज के जमाने की चीज।
1: यस। और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है, क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितने बार तेल, वो ही गरम किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं।
0: जी,
1: जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है।
0: एक तरह से आप जो है वो खानपान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि भाई अगर खानपान ठीक नहीं किया तो इसका असर।
1: सभी चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: जो लड़कियां एक उम्र पर पहुंच रही हैं और युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, तो वो क्या रीठा शिका काई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते हैं और वो तरह तरह की चीजों दादी नानी के नुस्खे अपनाने लगती हैं।
1: दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो
0: जी
1: मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो वो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है, वहां हेयर फॉल होता है।
0: उसको कैसे टाला जा सकता है?
1: उसके लिए मेडिसिन होते हैं अलग टाइप के,
0: ओके
1: मतलब वो मेडिसिन अलग है। आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टू हार्मोन थेरेपी। आप इस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स नहीं बोलो, खाना फूड जो होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं रोकेगा।
0: ओके
1: तो उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग से है। पर जो यंग जो होते हैं, जो युवा अवस्था में जा रहे हैं, और वहां उनको सडनली हेयर फॉल शुरू होता है, ये बहुत कॉमन है, जब क्योंकि ये हार्मोनल चेंज हो गया सडन। अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबिलाइज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो समझना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है
0: इस उम्र में तो सबका होता,
1: सबका,
0: हमारा भी हुआ
1: हाँ
0: था।
1: बिल्कुल यही डायलॉग होता
0: जी, तो इसको कैजुअली नहीं
1: हाँ,
0: लेना।
1: इसको कैजुअली नहीं लेना है। आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है, वही जो मैंने पहले बताया,
0: एक
1: हेयर
0: बार फिर
1: शेडिंग।
0: बता दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए, महिलाओं में 30 से 40 बाल।
1: 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर रोज हो रहे हैं 30 40 के ऊपर, रोज एक हाथ बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ

0: एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: अगर मैंने आपको ये बोतल दी और आपको बताया कि ये पानी है ना, ये पानी पीने से आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे और आप मुझ में बहुत बिलीव कर रहे हो, ओके? आपको इफेक्ट आना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है आपके बाल रोके, आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करे।
3: तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्स कहलाएगा?
2: यस। सो आपको देखना है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है हर मॉलिक्यूल का।
3: बिल्कुल।
2: तो ये तो हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स मैंने चालू किया या विटामिन ई लगाना चालू किया, अनियन जूस लगाना चालू किया, एंड माय माइंड सेज दैट आई एम गोइंग टू इंप्रूव, ऑल इज वेल।
3: जी,
2: यू विल इंप्रूव फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम।
3: ओके, उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगी।
2: yes.
3: मुझे लगता है यहाँ पर एक गाने की बारी है।

मुझे लगता है कि महिलाओं के हेयर फॉल की जो बात है उसके एक बड़े हिस्से को कवर किया हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बालों की देखभाल को लेकर और कौन

0: सी बातें आप कहना चाहती हैं?
1: बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण होते हैं। हेयर फॉल के बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरी कॉमन चीज जो राउंड राउंड पैचेस गिरते हैं बालों में, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है।
0: ओके, तो वो पहचानना जरूरी है कि बाल गोल गोल होके गिर रहे हैं।
1: तो वो गोल गोल होके गिरते हैं, कभी सडनली हेयर शेडिंग हो जाता है, कभी गोली खाने से इतना शेडिंग हो जाता है पता ही नहीं चलता कि आपको इतना जल्दी ज्यादा शेडिंग क्यों हुआ है।
0: कई बार कुछ लोगों को बुखार उखार होता है और वो दवाएं खाने के बाद,
1: तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बालनेस से अलग है।
0: यस,
1: तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या कोई भी वायरल बीमारी हुई है। पेशेंट भूल जाते हैं, कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन है, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है।
0: ओहो हो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे।
1: यस, आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था। 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है।
0: जी जी जी,
1: तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है।
0: ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है।
1: यस, तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है।
0: तो ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं खाने से होता है, या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं? और
1: सभी बीमारी का नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर के वजह से भी हेयर शेडिंग हो सकती होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है उसका असर आपका मेटाबॉलिक जो होता है असर, वो बालों पर गिरता है। इसमें 2 चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोगों को थोड़ा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है आप समझ सकते हैं कि आपकी पोनी छोटी होती जाने वाली है। और वो पोनी जब वॉल्यूम कम हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपके वॉल्यूम वापस रिगेन हुए। सिंपल लॉजिक ये है, आपके जब नए बाल आएंगे उनकी ग्रोथ की रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ।
0: ओ हो,
1: तो मुझे शोल्डर लेंथ के लिए आने के लिए कितने साल लगेंगे, आप काउंट करेंगे?
0: बिल्कुल नहीं, मैं नहीं काउंट। 1 महीने में 30 सेंटीमीटर, इसके आगे काउंट नहीं करना मुझे।
1: नहीं, 1 सेंटीमीटर इन अ मंथ।
0: इन अ मंथ है?
1: इन मंथ।
0: ओहो,
1: इन अ मंथ।
0: तो ये 12 सेंटीमीटर हो गए एक साल।
1: 12 सेंटीमीटर साल में।
0: हाँ, तो 10 साल में
1: तो आप करिए।
0: नहीं, ये हिसाब लगाइए, तो मतलब बढ़ेंगे ही नहीं ये बाल।
1: हाँ, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ती है।
0: ओहो,
1: आपका टकलापन ढक जाएगा क्योंकि बाल नए आ रहे हैं।
0: लेकिन वो थिन रहेंगे।
1: वो थिन, थिकनेस बढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे। तो जितना बाल आपके गए हैं, मतलब आपकी वॉल्यूम एकदम 50% हो गई है, आपकी वॉल्यूम वो 50% से 100 और 80% में होने में कितने साल लगेंगे?
0: जी,
1: तो वही कहना है वापस शेडिंग को पहले रोकिए।
0: हाँ, मतलब समय पर सावधान हो जाइए।
1: यस, बिल्कुल,
0: बहुत सही बात है, मैं भी सावधान हो गया। यहाँ पर एक गाने की बारी है, नौनिहाल फिल्म का गाना सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।
1: यस,
0: बढ़िया गाना कैफी आजमी का है। तो
1: ये जुल्फ अच्छी होनी चाहिए।
0: हाँ, जुल्फ अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।

0: ये गाना हमने सुना और हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचिता धुरत, और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीजों पर ध्यान देना होता है कि दो महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा मुकाम चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टेंशन, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, वो सब भी काम करते हैं।
1: डेली जो टेंशन होती है सभी को होती है
0: जी,
1: अभी डेली टेंशन से आप कितने डिस्टर्ब हो वो जरूरी है। आप डेली टेंशन ले रहे हो और यू आर एंजॉइंग योर वर्क,
0: मानसिक अवस्था क्या है?
1: हाँ, आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ रही है डेली टेंशन से, तो उसका असर आपके बालों पर भी होगा। अभी सभी डॉक्टर्स को टेंशन होती है, पर सभी डॉक्टर गंजे नहीं है ना।
0: नहीं, आपके बाल तो कितने अच्छे हैं। जी,
1: तो ये देखना जरूरी है कि आपको डेली टेंशन से आप मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ रही है, उसके साथ आपका खान पीन, मतलब आप खाना स्किप कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग, इतना काम रहता है, इतने कॉल्स पर रहते हैं, सुबह का नाश्ता खाना भूल जाते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं और सीधा रात को ही खाते हैं। जो हम बोलते हैं रात को कम खाइए,
0: और यहाँ तो
1: उल्टा
0: का खाना रात को हो रहा है।
1: हाँ, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कितने सालों से चलने वाला प्रोसेस है जो आपके गट को खराब करता है। फिर आप बीच में क्या एसिडिटी होती है, तो आप एक तो एसिडिटी के टैबलेट ले लेते हो, एसिडिटी के वजह से गट का इंटरनल फ्लोरा जो होता है, लाइनिंग, वो खराब होने चालू हो जाती है।
0: यस यस, बिल्कुल।
1: हमारे टाइम पर या जो हमारे परदादा ने सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे या 9 बजे सो गए, ये जो रिदम है जो हमारी बॉडी है और जो पृथ्वी घूम रही है, इसके साथ जब ये रिसर्च किया हुआ है, इसके साथ हमारी बॉडी और अर्थ के जो रिवोल्यूशन के साथ जब ये मैच होती है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। जो कॉर्टिजोल लेवल सुबह में रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन ये टाइम पर रिलीज होगा, अगर हम उसको संतुलन ही बिगाड़ दे तो क्या होगा।
0: बिल्कुल।
1: और ये समस्या पहले हम बड़े लोगों में देखते थे 30 या 35 सालों के ऊपर, पर कम उम्र में अभी देखना मिल रहा है, 20 साल के नीचे के बच्चों को

0: कॉमन बाल्डनेस, ठकलापन आ रहा है,
1: चिंता की बात है।
0: चिंता की बात, बहुत चिंता की बात है। मतलब अगर मैं सोचूं कि आज 20 साल का ये लड़का है जिसको बाल्डनेस आया है, मॉडरेट ग्रेड है, 10 साल में क्या होगा उसका,
1: जी
0: सोचिए, पूरा गंजा हो सकता है।
1: अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं।

0: अच्छा, कुछ बुरी आदतें लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है?
1: स्मोकिंग का काफी असर गिरता है.
0: जी, और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है?
1: बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है. स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है. कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी वो तो किसी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कारण से अच्छी नहीं है. ना इवन पैसिव स्मोकिंग. कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं. तो पैसिव स्मोकर एज बैड एज योर एक्टिव स्मोकर.
0: बिल्कुल। अभी हाल की एक रिसर्च है जो बताती है कि 30% या कुछ, वो मेरे एक साइंस वाले कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट शामिल की थी कि पैसिव स्मोकिंग इज टू डेंजरस, है ना, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल.
0: अच्छा, अब ये बताइए कि विज्ञापनों में कई बार अखबारों में या टेलीविजन पर हम या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि गारंटी है, एक जगह एक गंजा आदमी दिखाते हैं, दूसरी तरफ बाल एकदम पूरे, ये जो गारंटी है ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है कि कोई टेंशन नहीं है, बाल तो वापस आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाता है, ये कितना बड़ा भ्रम है।
1: बहुत बड़ा भ्रम है.
0: जी
1: आपकी लाइफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता है,
0: जी
1: तो बालों की गारंटी कैसे दे सकता है? हर एक आदमी अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं. अगर एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप करो

0: टाइम में, पैंडेमिक में देखिए, वायरस वही था, सेम वायरस था जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे। एक फैमिली में एक की डेथ होती है, दूसरे को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और तीसरे को कुछ भी नहीं होता है। क्यों?
1: बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है
0: पर सेम जीन से बंधे हुए हैं
1: जी,
0: फिर भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो यही है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, भले ही आपके जीन सेम है, पेरेंट्स से है। एक पेरेंट्स को काफी तकलीफ हुई है, एक भाई को कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है।
1: तो ये समझने की जरूरत
0: या
1: है।
0: तो इसके लिए गारंटी, हम साइंस में गारंटी वर्ड नहीं है, नॉन साइंस में गारंटी वर्ड है।
1: तो जैसे गारंटी आए सावधान हो जाना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: यस।
1: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

श्रोताओ, बालों का स्वस्थ होना और सुंदर दिखना न सिर्फ सुंदरता बल्कि कहीं न कहीं ये हमारे व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही थी डॉक्टर रचिता धूरत। इनसे बातचीत की थी यूनुस खान ने। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन इसी समय। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: मेरा सारा साथ होगा।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
5: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, डीजे सुने कार्यक्रम युववाणी।

हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबको अपने दोस्त अहमद अली का प्यार भरा नमस्कार। आप अपनी भाषा में कहें तो क्या हाल है, केम छो हो? युवाओं को यह याद दिलाना कि मैं इंग्लिश बोलना कूल है पर अपनी मातृभाषा बोलना सुपर कूल है। दोस्तों, आज के ज़माने में इंग्लिश बोलना ज़रूरी है।

है, करियर के लिए अच्छा है, लेकिन जो मज़ा अपनी मातृभाषा में है, अरे यार, या क्या बात है, कहने में है, वो दुनिया की किसी और भाषा में नहीं है। तो आज बात होगी मातृभाषा पर, उन युवाओं के नाम जो गर्व से कहते हैं मेरी भाषा, मेरी शान। सोचिए, जब बहुत गुस्सा आता है, या जब माँ पर बहुत प्यार आता है, या अंदर से कोई भाषा निकलती है जब प्यार में या गुस्से में, तो कौन सी भाषा निकलती है? जब अचानक कोई भाषा किसी चीज़ पर हम प्रतिक्रिया करते हैं, तो कौन सी भाषा निकलती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हमारी मातृभाषा। आज की युवा पीढ़ी अपने जड़ों को भूल नहीं रही है, बल्कि उसे नए अंदाज में अपना रही है। लोग कहते थे कि अंग्रेजी जानने वाले ही इंटरनेट चलाते हैं, पर जरा अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब या सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म आप खोल कर देखेंगे, तो आपको स्टैंड अप कॉमेडियन जो होते हैं और जो रील बनाने वाले जो युवा हैं आज के, वो आप देखेंगे कि मातृभाषा का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। और बात होगी इस बात पर, पहले लेते हैं ब्रेक।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी मातृभाषा की, तो इस बारे में मैं आपको इतना ही कहूँगा कि भाषा सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, यह हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति, हमारे दादा दादी की कहानियाँ और हमारे मिट्टी की खुशबू, ये सब हमारी मातृभाषा में समाहित है। दोस्तों, दुनिया की हर भाषा सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी ना भूलिए, उसको याद रखिए, क्योंकि मातृभाषा हमारी पहचान है, हमारी जिंदगी है। मातृभाषा है तो हम हैं। एक कहानी इस वक्त थोड़ी याद आ रही है मुझे कि मातृभाषा का महत्व बताने के लिए, कि एक व्यक्ति था जो किसी दूसरे देश में कमाने गया। थोड़े दिन पश्चात जब कुछ समय बीत गया, जैसे कुछ साल बीत गए, तो उसकी माँ ने उसको ख़त लिखा। जब ख़त उसको पहुँचा तो उसने पढ़ा, लेकिन वो उसको पूरा समझ नहीं सका, तो किसी और से पढ़वा कर उसने जवाब लिखवाया। जब उसकी माँ को ये पता चला कि ये जवाब उसने किसी दूसरे से लिखवाया है, तो उसने काली चादर ओढ़ ली। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? कि मेरा बेटा मातृभाषा भूल गया, तो समझो वो मेरे लिए मर गया। तो ये महत्व है मातृभाषा का दोस्तों। तो मातृभाषा है तो हमारी संस्कृति है, हम हैं, बातें होते ही रहेंगी। अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों बात करते हैं भूकंप के दौरान एनडीएमए और एसडीएफआरएफ वॉलंटियर्स की मुख्य भूमिका की। दोस्तों भूकंप के दौरान एनडीएमए और एसडीआरएफ वॉलंटियर्स की मुख्य भूमिका तो लोगों की जान बचाना है और संकट के समय उन्हें सहारा देना है। जब भूकंप आता है तो ये वॉलंटियर्स सरकारी रेस्क्यू टीमों के पहुंचने से पहले ही स्थानीय स्तर पर मोर्चा संभाल लेते हैं। वे मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने, उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार देने का काम करते हैं, साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने और सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविर लगाने में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों जब भूकंप या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब किसी सरकारी सहायता का इंतज़ार करने से बेहतर है कि अपने तौर पर ही काम किया जाए। इससे पहले ही जब लोग आपस में काम करते हैं तो जो सरकारी टीमें हैं, जो एनडीएमए की टीम होती है और जो

सड़कों से मलबा हटाते हैं, रास्ता साफ करते हैं ताकि एम्बुलेंस और राहत सामग्री के पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा पर वे विशेष ध्यान देते हैं। दोस्तों, भारत में NDMA मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत वॉलंटियर बनने की सबसे बड़ी योजना आपदा मित्र की है। इसके अलावा आप सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर के रूप में भी जुड़ सकते हैं, जो SDRF और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। इनका हिस्सा बनने की योग्यता और पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है। वॉलंटियर बनने के लिए योग्यता, आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, पढ़ाई कम से कम 7वीं कक्षा पास होनी चाहिए दोस्तों, और आप उसी जिले के निवासी होने चाहिए जहाँ पर आप आवेदन कर रहे हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको तुरंत सहायता के लिए बुलाया जा सके। स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना अनिवार्य है। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है, और इसमें जो है NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र, पूर्व सैनिकों या होमगार्ड से जुड़े लोगों को चयन में प्राथमिकता मिलती है। तो दोस्तों, ये बात थी NDMA और SDRF के वॉलंटियर्स की भूमिका की, जो भूकंप करते हैं भूकंप के वक्त आपको सहायता प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गई बात, आप सुनते हैं एक गीत।

नमस्कार, संस्कार संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।

दोस्तों बात करते हैं युवा और नागरिक कर्तव्य मतदान के बारे में। दोस्तों युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं, आज के लोकतंत्र की सक्रिय ताकत भी है। भारत की युवा आबादी लोकतंत्र की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। युवा केवल चुनाव के दिन वोट देने वाला नागरिक नहीं, बल्कि अपने आसपास की समस्याओं को समझने, सवाल पूछने, सही जानकारी हासिल करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाला जिम्मेदार नागरिक है। युवा अपनी ऊर्जा और तकनीकी समझ के माध्यम से मतदाता के जागरूक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने समझ के माध्यम से स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सम्मान, सामाजिक सद्भाव और डिजिटल जागरूकता जैसे क्षेत्रों में योगदान दे सकते हैं। मतदान क्यों जरूरी है? दोस्तों मतदान लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक की महत्वपूर्ण भागीदारी है। वोट केवल एक अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदार निर्णय लेने का अवसर भी है। युवाओं को चाहिए कि वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। उम्मीदवारों और उनके कार्यों के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करें। जाति, धर्म, अफवाह या किसी लालच के आधार पर निर्णय न लें। जी हाँ दोस्तों, जाति, धर्म और किसी भी लालच या पैसे रुपए के लालच में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मतदान हमें करना है अपने अच्छे और उज्जवल भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए। चुनाव के दौरान गलत सूचना और भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट से सावधान रहना चाहिए। मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके भारतीय नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता अपना नाम और मतदान संबंधी जानकारी आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर भी

सकते हैं। मतदान के संबंध में नागरिक का क्या कर्तव्य है? दोस्तों, नागरिक का कर्तव्य का मतलब केवल कानून पालन करना नहीं होता है। एक जिम्मेदार नागरिक देश के संविधान और कानून का सम्मान करता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, पर्यावरण को बचाता है, सामाजिक सद्भाव बनाए रखता है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है और समाज की समस्याओं के समाधान में सहयोग करता है। जो युवा व्यक्ति होते हैं उनको चाहिए कि इन कर्तव्यों को अपने दैनिक जीवन में ज़रूर उतारें। उदाहरण के लिए, जैसे कचरा सड़क पर न फेंकना भी नागरिक कर्तव्य है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी नागरिक कर्तव्य है, पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना भी नागरिक कर्तव्य है, अफवाहों को रोकना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना भी समाज सुधार की शुरुआत है। अब मतदान से समाज सुधार कैसे कर सकते हैं ये बताता हूँ कि एक अच्छा लोकतंत्र तभी मजबूत होता है दोस्तों, जब नागरिक जागरूक होकर भाग लेते हैं। मतदान के माध्यम से नागरिक स्थानीय और व्यापक जनहित के मुद्दों को महत्व दे सकते हैं, लेकिन मतदान के बाद भी नागरिक की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। जी हाँ, उसकी जिम्मेदारी वैसे ही बनी रहती है जैसे उसने मतदान के समय निभाई थी। अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में प्रशासन को बताना, जनहित के मुद्दों को उठाना और सकारात्मक सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना भी लोकतांत्रिक नागरिकता का हिस्सा है। जी हाँ, और यह भी एक प्रकार की देश सेवा है दोस्तों। और लोगों को चाहिए, खासकर युवा दोस्तों को, कि अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का वह ध्यान रखें और उस पर पूर्ण तरह पालन करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे तभी देश जागरूक होगा, क्योंकि युवा जो है वो देश की शक्ति होता है और देश का भविष्य उसके युवाओं पर ही आधारित है। युवा की सोच जितनी गहरी होती है और उत्साहवर्धक होती है तो वो अपने उत्साह से, अपने समझ से, अपनी हिम्मत से देश को मदद कर सकते हैं, उसको मजबूत होने में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सामरिक रूप से भी। तो इसलिए युवाओं को चाहिए कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें और ख़ास तौर से मतदान के प्रति जागरूक रहें।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में से हमने आज बातचीत की युवाओं के देश के प्रति योगदान के बारे में, मतदान के प्रति जागरूकता के बारे में और उनकी जिम्मेदारी के बारे में। तो उसकी जिम्मेदारी के बारे में ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर युवाओं का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उनकी जिम्मेदारियाँ भी वो आराम से निभा पाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। नियमित खेल, योग और स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज़रूरी है। अच्छा आहार लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और शारीरिक विकास का अर्थ शरीर का मजबूत होना है। तो दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी के साथ ही दीजिए अपने दोस्त अहमद अली को आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करने की आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

0: और मेरी प्यारी सखियों का महिला जगत प्रोग्राम में स्वागत है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की बात के साथ, और आज की बात में हम शामिल कर रहे हैं परिवार का महत्व। सखियों, सभी जानते हैं एक परिवार का महत्व क्या होता है, एक रिश्ते का महत्व क्या होता है, परिवार में बंधे रिश्तों का महत्व क्या होता है। देखिए, इंसान हो या फिर जानवर, सभी का एक परिवार होता है, सभी का अपना एक परिवार होता है, और सभी का अपना परिवार जो है उनका संसार होता है। सभी अपने परिवार से ढेर सारा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। परिवार में रिश्ते नाते बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा पारिवारिक संबंध होते हैं। हर एक सदस्य का अलग अलग रूप होता है, अलग अलग नेचर होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है परिवार बनता है और संभलता भी है। सखियों, परिवार में संयुक्त परिवार जो होता है, जहाँ सब नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, भाई भतीजा सब एक साथ रहते हैं, वो होता है संयुक्त परिवार। यानी परिवार के सभी जो सदस्य हैं, सभी कैंडिडेट जो हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, वो होता है परिवार। भारत में संयुक्त जो परिवार है, वो प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है कि संयुक्त परिवार बहुत अच्छा माना जाता है। संयुक्त परिवार के बच्चे बड़े होकर बहुत ज़्यादा सहनशील और आदर करने वाले, सम्मान करने वाले और बहुत ज़्यादा अनुशासित बच्चे होते हैं, तो वो पढ़े जाकर आगे जाकर बहुत बड़े आदमी बनते हैं। साथ ही सखियों, देखिए, हमारे पालन पोषण को हमारा परिवार अपनी पहली प्राथमिकता समझता है। साथ ही समाज में परिवार जो होता है अपनी, उसी से हमारी पहचान बनती है। साथ ही इसलिए हर मायने में व्यक्ति के लिए उसका परिवार ही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। साथ ही परिवार में, संयुक्त परिवार में पले बड़े बच्चे सभ्य होते हैं, समाज में भी आगे जाकर वो उस परिवार का नाम रोशन करते हैं। साथ ही स्वच्छ समाज के लिए अच्छे परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी आती है, तो परिवार एकजुट होकर, एक साथ होकर उस प्रॉब्लम का सामना कर देता है और उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देता है और फटाक से सॉल्व भी कर देता है। तो है ना पते की बात और काम की बात। साथ ही संयुक्त परिवार जो होता है, एक बच्चे के लिए एक ढाल होता है, एक मिसाल होता है। कोई भी उसके सामने प्रॉब्लम आएगी, तो हर उस प्रॉब्लम में जो है बच्चे का परिवार उसके साथ खड़ा रहेगा, उसके सामने, उसकी प्रॉब्लम्स के सामने जो है ढाल बनकर खड़ा रहेगा। तो बच्चे को तो परेशान होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसके साथ हमेशा उसका परिवार रहता है। परिवार में बुआ फूफा, दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, भाई बहन, कजन्स, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें संभाल कर रखना होता है, और इन रिश्तों की डोरियां बहुत ज़्यादा कच्ची होती है। इसलिए इन रिश्तों की कच्ची डोरियों को प्रेम से ही बांधा जा सकता है। इनमें थोड़ा सा तनाव आ जाता है या फिर खिंचाव आ जाता है, तो ये रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि ये धागे, जो रिश्तों के धागे होते हैं, वो कच्चे होते हैं। इसलिए प्रेम से सींचने से ये धागे मजबूत होते हैं। अब हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: सखियों, परिवार में कायदा नहीं, कानून व्यवस्था नहीं, व्यवस्था होती है। साथ ही जीवन में सब कुछ प्राप्त कर पाने की काबिलियत हमें परिवार से ही प्राप्त होती है, परिवार से ही मिलती है। साथ ही परिवार में हमें डर नहीं लगता, हमें भय नहीं होता है, हमारे परिवार के सदस्यों पर भरोसा होता है। साथ ही परिवार में आग्रह

नहीं सिर्फ आदर होता है। साथ ही परिवार में संपर्क नहीं संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं। साथ ही भरोसे के साथ उन रिश्तों की डोरियां है प्रेम से बंधी होती है। साथ ही प्रेम में अर्पण नहीं समर्पण होता है। साथ ही परिवार में जो है एक दूसरे को जोड़े रखने की काबिलियत होती है। तो ये तो थी परिवार की बातें, अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियो, हमने अभी एक गाना सुना था, बहुत ही प्यारा गाना था। हमने लिया था एक राजा है एक रानी, आवाज़ थी और फिल्म थी एक रिश्ता। आवाज़ थी अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की। सखियो, आज की बात में हमने परिवार की बात की थी, अब चर्चा में शामिल कर रहे हैं ब्रेस्ट रेसेस, कारण, बचाव और उपचार। सखियो, ये आम महिलाओं में जो है आम प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, ब्रेस्ट रेसेस, स्तन पर चकते या फिर दाने हो जाते हैं। ये इसका मुख्य कारण जाने तो ये है, मुख्य रूप से नमी, गर्मी, रगड़ या फिर एलर्जी के कारण होता है। जहाँ इफेक्टेड एरिया है उसको हमेशा साफ रखें, सूखा रखें, हल्के हाथ या फिर हल्के साबुन का आप प्रयोग कर सकती है। हाथ पे साबुन लेके जहाँ जो इफेक्टेड एरिया है उस पे लगा के फिर कपड़े से साफ कर लीजिए, पानी से धोकर, सुखा कर। फिर आप उस जगह पर नारियल तेल यूज़ कर सकते हो या फिर पाउडर यूज़ कर सकते हो। सूती और साथ ही ढीले कपड़े पहने और डॉक्टर की सलाह से एंटी फंगल या फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सखियों, ब्रेस्ट रेसेस के कारणों की बात करें तो इंटर ट्रिगो, ब्रेस्ट के नीचे की जो त्वचा है आपस में रगड़ खाने और वहाँ नमी का या फिर पसीना रुकने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आमतौर पर देखी जाती हैं। फंगल या फिर बैक्टीरियल संक्रमण की बात करें तो यीस्ट, कैंडिडा जो है बैक्टीरिया गर्म और नम वातावरण में तेजी से पनपते हैं। साथ ही कई बार होता है कि एलर्जी की वजह से भी ऐसा होता है, एलर्जी नए डिटर्जेंट या साबुन या फिर परफ्यूम या फिर जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उनके इस्तेमाल से भी त्वचा में जलन या फिर रेशेस हो जाते हैं। या फिर एक्जिमा या फिर सोराइसिस जो होता है त्वचा की, ये पुरानी बीमारियां भी छाती या फिर स्तनों पर लाल चकते और खुजली पैदा कर सकती है। और एक बार खुजली खुजलाएं तो बार बार खुजली करने का मन होता है, ये एक्जिमा होता है। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग में भी ऐसा होता है, छोटे बच्चे जब होते हैं तो दूध पिलाने के दौरान निप्पल के आसपास की नमी या फिर रगड़ से भी संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इससे जो है ये तो देखे जाए तो ये तो हैं इसके कारण। साथ ही ऐसे केसेस में जब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट रेसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साथ ही इनके बचाव की बात करें तो बचाव में ज़्यादा से ज़्यादा इनको नमी से बचाएं, पसीने से बचाएं, सूखा रखें, साथ ही सही कपड़े पहने और खुशबूदार प्रोडक्ट से परहेज करें। इफेक्टेड जगह पर आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। उपचार की बात करें तो ठंडी सिकाई करें, बर्फ का सेक भी कर सकते हैं और हल्के सूती और हल्के कलर के कपड़े पहने जो अपने तेज़ धूप होती है उससे भी बचाव करते हैं और गर्मी से भी बचाव करते हैं। साथ ही जहां पर इफेक्टेड एरिया है उसे खुजलाएं नहीं, आराम से जो है उस पे नारियल तेल या फिर पाउडर लगाकर उसको आप ढंग से सही से रख सकते हो। यदि रेसेस ठीक ना हो तो तुरंत ही आप डॉक्टर की सलाह ले सकती हैं। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: सखियों, किचन टिप्स की बात करें तो किचन टिप्स में हम शामिल कर रहे हैं ज्वार का स्वाद, सेहत का लाभ। सखियों, ज्वार तो हर घर में मिल जाती है और ज्वार जो है बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी होती है। सॉरेगम, ज्वार का स्वाद हल्का मीठा, मिट्टी जैसा और पौष्टिक होता है। ये एक ग्लूटेन मुक्त और फाइबर से भरपूर अनाज है, जो पाचन सुधारने, वजन घटाने, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने और दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज्वार का स्वाद और विशेषताओं की बात करें तो हल्की मिट्टी जैसा इसका स्वाद, सादा स्वाद होता है, रोटियां और दलिया में आसानी से ढलने वाला होता है। साथ ही इसकी रोटी बनाने से और खाने से बहुत ज़्यादा पौष्टिकता मिलती है। प्राकृतिक रूप से ये ग्लूटेन फ्री है, पाचन में, पचने में भी आसान होता है, सुपाच्य होता है। ज्वार सेहत के लिए प्रमुख इसके लाभ भी देता है, साथ ही जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे भी सही करता है, मजबूत करता है, पाचन शक्ति सुधारता है। साथ ही इसमें उच्च फाइबर होने से पेट साफ रहता है और कब्ज भी दूर होती है। साथ ही ज्वार जो है वो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, कम ग्लाइरोमिक जो इंडेक्स के कारण ये शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है। साथ ही वजन कंट्रोल करता है, इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती, यानी एनर्जी से भी भरपूर होता है। साथ ही हमारी हड्डियों को भी ज्वार खाने से मजबूती मिलती है। इसमें कैल्शियम, आयरन और फॉस्फोरस जो है प्रचुर मात्रा में होता है। एनर्जी और प्रतिरक्षा की बात करें तो ये शरीर को ऊर्जावान रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो है ना ज्वार हमारे सेहत के लिए फायदेमंद। अब ले चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुना देते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, हमने अभी प्यारा सा गाना सुना था। अब घड़ी की टिक टिक यही इशारा कर रही है कि प्रोग्राम जो है अपनी समाप्ति की ओर है। आप अपनी रेडियो सखी राजेश्वरी को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, आकाशवाणी नागौर का ये चरमी चैनल है। शाम के 6 बजने को है कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को

0: संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉ. खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी है। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेले नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में कुछ देर बाद भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: वैक्स पहले आपने गीत सुना था, हमने लिया था फिल्म मृत्युदाता से, आवाज़ें थी दलेर मेहंदी और सुदेश भोसले की। ये गीत हमने लिया है फिल्म फिर हेरा फेरी से, आवाज़ हिमेश रेशमिया।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी नागौर का चिन्मय चैनल है। शाम के 6:20 हुए हैं, जिसे सुनिए कार्यक्रम माटी के स्वर। और यह है कार्यक्रम माटी के स्वर की पहली पेशकश। आवाज है मनभार गौड़ और पार्टी की।

0: नमस्कार, संस्कार संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: यह माटी का स्वर कार्यक्रम की अगली पेशकश आवाज हाकम खां की है।

माटी के स्वर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी नागौर का ये 6वां चैनल है। शाम के 6:23 होने को हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिलेवार समीक्षा की। स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए राजस्थान पुलिस ने अभियान चलाया, सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी। सावन के आखिरी सोमवार पर आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल, रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर। और प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में मॉनसून के बादल मेहरबान, 26 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आज रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रिटर्निंग अधिकारियों से संवाद कर जिलेवार चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देने और मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव कार्य में लापरवाही नहीं बरतने और निष्पक्ष, पारदर्शी तथा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करने को कहा। इस बीच नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में महज 3 दिन का समय शेष रहते भाजपा और कांग्रेस के साथ ही अन्य पार्टियां भी प्रत्याशियों के चयन के लिए मंथन कर रही हैं। दूसरी ओर

0: राजनीतिक दलों से टिकट हासिल करने के लिए संभावित प्रत्याशी भी जोर शोर से दमखम दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि 309 नगरीय निकायों के लिए दो चरण में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, वहीं 11 सितंबर को दूसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। मतगणना 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव के दौरान लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए राजस्थान पुलिस ने सतर्क मतदाता ही सुरक्षित मतदाता है अभियान चलाया है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर नव मतदाताओं, चुनाव प्रत्याशियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं के प्रति आगाह किया है। साइबर क्राइम और तकनीकी सेवाओं के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने चुनाव के दौरान फर्जी लिंक, ओटीपी, क्यूआर कोड, फिशिंग ईमेल और फेक न्यूज के प्रति सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने मतदाताओं को फर्जी वोटर लिस्ट से सावधान रहने और मतदाता सूची संबंधी जानकारी के लिए केवल विभागीय वेबसाइट को ही अधिकृत मानने की सलाह दी है। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और सभी को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इन दिनों कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पाली में आज महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकालकर मतदान का संदेश दिया। इस दौरान नव मतदाताओं को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। श्रीगंगानगर में जागरूकता के लिए शिक्षण संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। वहां रैली के साथ ही रंगोली और मतदान जागरूकता गतिविधियां रखी गई हैं। भरतपुर में भयमुक्त मतदान के लिए पुलिस जवानों ने मार्च निकालकर आम जन में विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया। ब्यावर में स्वीप की पाती और वोटर की मनुहार कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को मतदान केंद्र आने का निमंत्रण दिया गया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक उद्यम लाभान्वित हुए हैं। आज नई दिल्ली में PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और 44% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में शुरू की गई इस योजना से अब तक 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं।
1: PMFME की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं।
0: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में 10 साल पूरे कर लिए हैं। साल 2016 में शुरू हुआ UPI आज देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016-17 में UPI के जरिए केवल 1,78,00,000 लेन देन हुए थे, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गए। इसी अवधि में लेन देन की कुल राशि 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314,00,000 करोड़ रुपए हो गई। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। ये इस समय 11 देशों में काम कर रहा है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर प्रदेश भर के शिवालयों में श्रद्धा और उल्लास का माहौल बना रहा। भगवान भोलेनाथ के अभिषेक को लेकर श्रद्धालु तड़के से ही बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ मंदिरों में कतारबद्ध दिखाई दिए। पवित्र सरोवरों से जल लाकर भगवान को अर्पित करने के लिए कांवड़ियों के जत्थों ने उत्साह से अंतिम सोमवार पर अपनी श्रद्धा

0: प्रकट की। पाली जिला मुख्यालय पर निकाली गई कावड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। वहां लाखोटिया महादेव मंदिर में सालाना मेला आयोजित किया जा रहा है। डीग के कामवन कस्बे में चारों धामों की प्रतिकृतियां सजाई गई हैं, जिन्हें देखने के लिए पड़ोसी जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जयपुर के ताड़केश्वर और झारखंड सहित प्रमुख महादेव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी, जो दिन ढलने तक बनी रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आज अपने आवास पर भगवान शिव का अभिषेक किया। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने प्रदेशवासियों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। रक्षाबंधन का त्यौहार करीब आने के साथ ही बाजार इन दिनों तरह तरह की राखियों से सज गए हैं। भाइयों की कलाई पर बहन का स्नेह सजाने के लिए डाक विभाग भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। समय पर राखी पहुंचाने के लिए डाक कर्मी जुटे हुए हैं। पाली के मुख्य डाकघर के सहायक अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि लोगों तक समय पर राखी के लिफाफे पहुंचाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
1: भारतीय डाक विभाग की ओर से भारत के सैनिकों के नाम से एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें बहनें अपने भाइयों के नाम से जिस तरह से राखी भेजती है, उसी तरह से भारत माता के वीर जवान जो कि बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अवकाश के समय घर पर नहीं आ सकते हैं, भारत की सभी बहनों की ओर से, बालिकाओं की ओर से उनको एक भावनात्मक संदेश और रक्षा सूत्र भेजने की एक मुहिम भारतीय डाक विभाग पर चलाई गई है, जिसमें सभी स्कूलों की बच्चियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में हमारे जो डाक सहायक हैं, शाखा डाकपाल हैं, वो जाकर बच्चियों को इसकी जानकारी दे रहे हैं।
0: इस बीच कुछ डाकघरों में सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए हैं, जिनके जरिए बहनें अपने भाइयों तक राखी के साथ ही अपनी फोटो भी भेज रही हैं। कई विद्यालयों में छात्राओं की ओर से सैनिकों को भी राखी और पत्र भेजे जा रहे हैं। इधर देश की सरहद पर तैनात जवानों को राखी बांधने के लिए जयपुर से आज राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा रवाना हुई। यात्रा की संयोजिका साध्वी समदर्शी ने बताया कि बालिकाओं का एक दल चीन सीमा स्थित नाथुला और बॉर्डर चौकियों पर जवानों को राखी बांधेगा।
2: मुख्य उद्देश्य यात्रा का है कि सरहदों की तरफ आम जनता का रुख हो और देश में जन जागरण हो। हमारे जो अंतिम प्रहरी हमारी सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, उन सैनिकों के प्रति हम कृतज्ञता कैसे ज्ञापित कर सकते हैं। सभी स्कूलों से और घरों से राखियां लेकर

0: 14 वर्ष से राखियां बांधी। इस बार श्री शक्तिपीठ में पहली बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ कूच किया है।
1: जैसलमेर आज अपना 871वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध ये सरहदी शहर अपनी स्थापना, वैभव और कला संस्कृति के लिए पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान रखता है। स्थापना दिवस पर आज विभिन्न संस्थाओं और संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम रखे गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्थापना दिवस के अवसर पर सोनार दुर्ग स्थित भाटी वंश की कुल देवी माँ स्वांग्या जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं जैसलमेर के संस्थापक महारावल जैसल देव की प्रतिमा का पूजन, गायत्री यज्ञ एवं दुर्ग की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप ध्वज पूजन संपन्न हुआ। जैसलमेर का गौरव, वैभव और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सदैव अक्षुण रहने तथा स्वर्ण नगरी विकास के नए आयाम स्थापित करने की प्रार्थना की गई। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आज कई जगह मॉनसून ने सक्रियता दिखाई। करीब हफ्ते भर बाद राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में दोपहर बाद आई तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सवाई माधोपुर में हुई रिमझिम बरसात से मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, भरतपुर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में 26 अगस्त तक बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान उदयपुर तथा अजमेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में आगामी एक सप्ताह तक मानसून परिस्थितियां कमजोर बनी रह सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिलेवार समीक्षा की। स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए राजस्थान पुलिस ने अभियान चलाया। सतर्क रहने की एडवाइजरी

0: जारी। सावन के आखिरी सोमवार पर आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल, रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर। और प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में मानसून के बादल मेहरबान, 26 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं दिनेश श्रोत्रिय। राजसमंद में इस बार पर्याप्त बारिश नहीं हुई है और अब मानसून का दौर भी धीमा पड़ गया है। ऐसे में जिले के जल स्रोतों में पानी की आवक कम हुई है। जिले में 1 जून से अब तक 287 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। कम बारिश के कारण जिले की प्रमुख नदियों गोमती, बनास और चंद्रभागा में पानी की आवक नहीं हुई है। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजसमंद में चुनावी हलचल तेज हो गई है। वार्ड पार्षदों, सभापति और अध्यक्ष पदों के दावेदारों की होड़ लगने लगी है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दावेदार अपने अपने पोस्टर तैयार कर अभी से प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले नगर परिषद सहित जिले की चारों नगर पालिकाओं के वार्डों के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी हुई। जिला परिषद सभागार में कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने लॉटरी प्रक्रिया पूरी की, जहां बालिकाओं ने वार्डों की पर्चियां निकाली। कुल 155 वार्डों में आरक्षण तय किया गया। इनमें 22 वार्ड SC, 6 ST और 31 OBC के लिए आरक्षित है, जबकि 96 वार्ड ओपन रखे गए हैं। कुल 58 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। राजसमंद नगर परिषद में 45, नाथद्वारा में 40 और आमेठ तथा देवगढ़ में 25-25 वार्ड हैं, जबकि भीम नगर पालिका में 20 वार्ड है। राजसमंद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा प्रभात फेरी निकाली गई। बालकृष्ण स्टेडियम से शुरू हुई प्रभात फेरी गांधी सेवा सदन और सिविल लाइन्स होते हुए शहीद स्मारक पहुंची। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में शहरवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। प्रभात फेरी में कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी, स्कूली छात्र, स्काउट और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय समारोह राजसमंद में महाराणा प्रताप उद्यान के पास आयोजित हुआ, जहां जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने ध्वजारोहण किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने राज्यपाल के संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने पर 53 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। वहीं स्कूली छात्राओं ने सामूहिक PT का प्रदर्शन किया और देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रही। जिले में गर्भवती महिलाओं की सघन हेल्थ स्क्रीनिंग अभियान के तहत 234 गांवों और ढाणियों में मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस मनाया गया। अभियान के दौरान 1638 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जबकि 122 हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान कर उनकी विशेष निगरानी शुरू की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। राजसमंद में नशा मुक्त राजस्थान अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। अभियान के तहत जिले के 350 से अधिक सरकारी और निजी स्कूलों में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां 30,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं और अभिभावकों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें नशे से दूर रहकर स्वस्थ और उज्जवल भविष्य बनाने का संदेश दिया। अभियान के तहत शपथ प्रतियोगिताएं और प्रेरक लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। गोरमघाट कामलीघाट रेलखंड में चलती ट्रेन से लटक कर रील बनाने वालों के लिए रेलवे ने सख्त चेतावनी जारी की है और कहा है कि ट्रेन में स्टंट करना कानूनन अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ RPF FIR दर्ज कर जेल और जुर्माने की कार्रवाई करेगी। राजसमंद पुलिस ने महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में अलग अलग विभागों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। 115 स्कूल और कॉलेजों की छात्र छात्राओं से ऑनलाइन संवाद कर महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, गुड टच बैड टच, आत्मरक्षा और महिला हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। पुलिस ने आमजन से महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में तुरंत सूचना देने और अभियान में

0: सहयोग की अपील की। इसके साथ ही राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश में आए नगर निकाय चुनाव री तैयारियां तेज, राज्य निर्वाचन आयुक्त तैयारियां रो जिलावार जायजो लीनो। स्थानीय निकाय चुनाव रे दौरान लोगों ने साइबर ठगियों बचावन सारू राजस्थान पुलिस अभियान चलायो, सावचेत रहवन सारू एडवाइजरी जारी कीनी। सावन महीना रा आखिरी सोमवार रे मौके आज पूरा राज्य में सिरधार उमावरो माहौल, राखी री तैयारियां जोरा माथे। और प्रदेश रा लंकाऊ और उगनी जिला में चौमासारी बिरखा, 26 अगस्त ताई मेह बरसबारा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव री तैयारियां तेज वेगी है। राज्य निर्वाचन विभाग री ओरू आज रिटर्निंग अधिकारियां री सिखावण रो कार्यक्रम राखी छियो। प्रदेश निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए रिटर्निंग अधिकारियां सागे बातचीत कर जिलावार चुनाव तैयारियां रो जायजो लीनो। वह अहलकारा ने संवेदनशील मतदान केंद्रा माथे खास ध्यान देवण और वोट देवण वाला रा सुबिता सारू सगला जरूरी इंतजाम करण रा हुकम दीना। इविचे सियासी पार्टियां रा टिकट हासिल करण सारू संभावित उम्मीदवार ई जोर आजमाइश कर रहा है। नाम पाना दाखिल करण रो काम सरू फेवण माई महज 3 दिन रो बगत रहता खास पार्टियां भाजपा और कांग्रेस सागे दूजी पार्टियां माई उम्मीदवारां रा चयन सारू मंथन चाल रियो है। ध्यान जोग है कि राज्य रा 309 नगरीय निकाय चुनाव सारू पहला दौर माई 9 सितंबर और दूजा दौर माई 11 सितंबर न वोट पड़ेला। वोटां री गिनती 14 सितंबर न करी जावेला। नगर परिषद सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष रो चुनाव 21 सितंबर न भेला। नगर निकाय और पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव रे दौरान लोगां ने साइबर ठगियों बचावण सारू राजस्थान पुलिस सतर्क मतदाता ही सुरक्षित मतदाता है अभियान चलायो है। पुलिस एडवाइजरी जारी कर और वोट देवण लायक बणिया नुआ लोगां उम्मीदवारां पार्टियां रा कार्यकर्ता और चुनाव ड्यूटी माई लगोड़ा कर्मचारियां ने माली धोखाधड़ी और भरमावण वाली जानकारियां सावचेत रहवण बाबत कहो है। साइबर अपराध और तकनीकी सेवाओं जुड़ियो काम देख रहा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह चुनाव रे दौरान फर्जी लिंक ओटीपी क्यूआर कोड फिशिंग ईमेल और फर्जी खबरों सावधान रहवण री अर्ज कीनी है। वह वोट देवण वालाओं फर्जी वोटर लिस्ट सावधान रहता थका केवल विभागीय वेबसाइट ही जानकारी लेवन सारू कहो। पुलिस उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया अकाउंट हिफाजत सागे रखण सारू कहो है। इस आगे चुनाव ड्यूटी में लागोड़ा कर्मचारियों ने निजी डिवाइस और पब्लिक वाईफाई काम लेवण बचबारी राय दीची है। प्रदेश में आवता नगरीय निकाय चुनाव में वोट देवण वाला री तादाद बधावण और सगला ने वोट देवण सारू प्रेरित करण रा मकसद न्यारा न्यारा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। पाली में आज कॉलेज रा विद्यार्थी जागरूकता रैली निकाल और वोट जरूर देवण रो संदेश दीनो। इन दौरान नुआ मतदाताओं ने वोट देवण री सौगंध दिराई ची। श्रीगंगानगर स्कूलों में रैली सागे रंगोली बनावण सरीखा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। भरतपुर रा खास बाजारा और जनता री आवण जावण रे ठौड़ा पुलिस रा जवान मार्च कर और बिना डरिया वोट देवण रो भरोसो चकायो। बालोतरा माए जागरूकता रैली निकाली जी, जदके ब्यावर माए स्वीप की पाती और वोटर री मनुहार कार्यक्रम रे जरिए वोट देवण वाला ने मतदान केंद्र माथे जार वोट देवण रो न्योतो दियो चियो। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान कहो है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME हाल ताई 2 लाख बत्ता कारोबार न फायदो वियो है। वह आज नई दिल्ली में PMFME सम्मेलन में बोल रहा है। पासवान कहो कि इनरो फायदो लेवन वाला माए करीब 80% पहली दफा कारोबार शुरू करने वाला है और 44% महिलावां है। पासवान बतायो कि

0: साल 2020 में चलाई गई इन योजनाओं हाल ताई नौकरी धंधा रा 10 लाख मौका बनिया है।
1: पीएमएफएमई की हमारी स्कीम जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं।
0: देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वरूपियां 10 साल पूरा फेंकिया है। वित्त मंत्रालय रे मुजब साल 2016-17 में यूपीआई रे जरिए महज 1,78,00,000 लेन देन करी चिया है, जो लाला माली साल में 24,162 करोड़ उम्बत्ता वे क्या। इन्हीं मियाद में लेन देन री कुल रकम 7,000 करोड़ रुपये बैधर करीब 314,00,000 करोड़ रुपया फेंकी। यूपीआई अब भारत सागे संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव में ही काम कर रहे है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। सावन महीना रा आखिरी सोमवार रे मौके आज राज्य रा शिव मंदिरा में श्रद्धा और उमाव रो माहौल बनियो डो है। भगवान भोलेनाथ रा अभिषेक सारू जात्रु तड़के ही बम बम भोले और हर हर महादेव रा जयकारा सागे मिंद्रा माए लेना माए लागन लग गया। पवित्र सरोवरों जल लार भगवान रा चढ़ावन सारू कावड़िया रा जत्था उमाव सागे आस्था रो दर्शाव कीनो। पाली माई निकाली जी कावड़ यात्रा रो न्यारी न्यारी छोड़ा स्वागत करी चियो। वठे लाखोटिया महादेव मिंदर माए सालाना मेलो भर रियो है। डीग जिला रा काम वन माए चार धाम री नकल बनाई ची है, जाना निरखण सारू न्यारी न्यारी छोड़ाऊ मोटी तादाद माए जात्रु पुग्या। जयपुर रा ताड़केश्वर और झारखंड समेत न्यारा न्यारा महादेव मिंद्रा माए संवारे हुई भक्तां री मोटी तादाद नजर आई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही वारा रहवास माए भगवान शिव रो अभिषेक किन्नो। ये मौके सोशल मीडिया संदेश रे जरिए वे जनता री जिंदगी माए सुख शांति और बरकत री कामना कीनी। राखी रो त्योहार नजदीक आवन सागे बाजारा माए भांत भांत री राखियां मिलन लगी है। भाइयां री कलाई माथे बहन रो प्रेम सजावन सारू डाक विभाग ही पूरा जतन कर रियो है। टेम सर राखी पुगावन सारू आवता दिना आवन वाली छुट्टियां रा दिन ही कई पोस्ट ऑफिस खुलिया रह वेला। पालीरा हेड पोस्ट ऑफिस रा सहायक अधीक्षक राकेश कुमार बतायो के लोगां ताई राखियां रा लिफाफा टेम सर पुगावन सारू सगला जरूरी इंतजामात करी चिया है। इविचे कुछ डाकघरां माए खुदरी फोटो लेवन रिठोड़ बनाई ची है, जठे बहना भाइयां ताई राखी सागे मारी फोटो ही भेज रही है। कई स्कूलां माए विद्यार्थियों री ओर फौजियां नई राखियां और कागज भेजा चाटिया है।
2: भारतीय डाक विभाग की ओर से भारत के सैनिकों के नाम से एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें बहनें अपने भाइयों के नाम से जिस तरह से राखी भेजती है, उसी तरह से भारत माता के वीर जवान जो कि बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अवकाश के समय घर पर नहीं आ सकते हैं, भारत की सभी बहनों की ओर से बालिकाओं की ओर से उनको एक भावनात्मक संदेश और रक्षा सूत्र भेजने की एक मुहिम भारतीय डाक विभाग पर चलाई गई है, जिसमें सभी स्कूलों की बच्चियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में हमारे जो डाक सहायक हैं, शाखा डाकपाल हैं, वो जाकर बच्चियों को इसकी जानकारी दे रहे हैं।
0: इविचे देश री सरहद माथे तैनात जवाना सारू जयपुरू आज राष्ट्रीय रक्षा बंधन यात्रा रवाना फी। इनमाए करीब 50,000 राखियां जवाना री कलाई माथे सजावन सारू टाबरियां रो एक दल चीन लागती सरहद ताई पुगेला। दल री संयोजिका साध्वी समदर्शी बतायो का आ यात्रा नाथुला और सिक्किम बॉर्डर सारू रवाना फी।
3: मुख्य उद्देश्य यात्रा का है कि सरहदों की तरफ आम जनता का रुख हो और देश में जन जागरण हो। हमारे जो अंतिम प्रहरी हमारी सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, उन सैनिकों के प्रति हम कृतज्ञता कैसे ज्ञापित कर सकते हैं। सभी स्कूलों से

0: राखिया बांधी। इस बार श्री शक्तिपीठ ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ कूच किया है।
1: जैसलमेर रो 871वां स्थापना दिवस आज मनायो।

0: चाचियो है। स्वर्ण नगरी रा नाम मशहूर ओ सरहदी शहर वारा वैभव और कला संस्कृति सारू पर्यटन नक्शा माथे खास ठौर रखे है। स्थापना दिवस रे मौके आज वठे न्यारी न्यारी संस्थावां और संगठनारी ओरों भांत भांत रा कार्यक्रम राखी चिया। और ब्यूरो माणा जैसलमेर खबर नवीसों।
1: स्थापना दिवस के अवसर पर सोनार दुर्ग स्थित भाटी वंश की कुल देवी माँ स्वांग्या जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं जैसलमेर के संस्थापक महारावल जैसल देव की प्रतिमा का पूजन, गायत्री यज्ञ एवं दुर्ग की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप ध्वज पूजन संपन्न हुआ। जैसलमेर का गौरव वैभव और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सदैव अक्षुण रहने तथा स्वर्ण नगरी विकास के नए आयाम स्थापित करने की प्रार्थना की गई। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: अरब मौसम। प्रदेश रा उगनी और लंकाऊ हल्का माए आज के इठोड़ा चौमासारी बिरखाफी। करीब एक हफ्ता पाछे राजधानी जयपुर और आरएसआर रा हल्का माए आज दोपहरा पाछे तेज बिरखाफी। सवाई माधोपुर माए रिमझिम बरसात हुई। मौसम विभाग रे मुजब कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग रा कुछ हल्का माए 26 अगस्त ताई बिरखा माए बढ़ोतरी सागे कठे कठे जोरदार बारिश रा आसार है। इन दौरान उदयपुर और अजमेर संभाग रा कुछ हल्का माए हल्की मझला दर्जारी बारिश रो अनुमान है। हालांकि राज्य रा आतुणी हल्का माए आवता एक सप्ताह ताई बिरखा कम फेवन री संभावना है। चौमासारी रुतमाए मच्छरां रा कारण फेवन वाली बीमारियां री रोकथाम अरवा माथे काबू करण सारू चिकित्सा विभाग री ओरू जयपुर माए स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान चलायो जा रियो है। इन तहत घर घर सर्वे, सोर्स रिडक्शन, एंटी लार्वल गतिविधियां और साफ सफाई उन जुड़िया काम करिया जा रिया है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरु सुन ली रहो। प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव री तैयारियां तेज। राज्य निर्वाचन आयुक्त तैयारियां रो जिलावार जायजो लीनो। स्थानीय निकाय चुनाव रे दौरान लोगों ने साइबर ठगियों बचावन सारू राजस्थान पुलिस अभियान चलायो। सावचेत रहवन सारू एडवाइजरी जारी कीनी। सावन महीना रा आखिरी सोमवार रे मौके आज पूरा राज्य माए सिरधार उमावरो माहौल। राखी री तैयारियां जोरा माथे। प्रदेश रा लंकाऊ और उगनी जिला माए चौमासारी बिरखा 26 अगस्त ताई मह बरसबारा आसार। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, जिसे सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: पारी। जो बडेरा है जो को देसी खेती करता, देसी खाद काम में लेता, और देसी है जो को आजकल भी घणकरा ऐडा है जो को देसी छिड़काव हो गया, जिन सू आप वितुज है जो को अनाज ले सका। भाई आज आप बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्टरी, यानी कि जगह केंचुआ खाद नाम सुमी जाने हैं, केंचुआरी मददू जका सड़ियोड़ा गलियोड़ा जैविक कचरो और गोबर ने विघटित कर बनाई जाने वाली एक घनी उपजाऊ और पोषक तत्वों भरपूर आज जैविक खाद है, जकी वर्मी कंपोस्ट नाम आप जान सका। आ मिट्टी री सेहत और पौधा रे विकास रे वास्ते घनी फायदेमंद है। फायदे री जे बात करा तो माटी री उर्वरता, मिट्टी री संरचना और जल धारण क्षमता ने है जो बढ़ावे, पोषक तत्व पौधा ने आसानी मिलन वाला आवश्यक जगह पोषक तत्व है, सूक्ष्म जीव है जो प्रदान करे। इनने सागे सागे गंधहीन यानी कि सामान्य गोबर री खाद री तरह इनमें बदबू नहीं आवे और माखी मच्छर भी इनमें है जो नहीं पनपे केंचुआ खाद में। पर्यावरण ने भी अनुकूल है जहाँ रासायनिक उर्वरक निर्भर भी कम रहना पड़े और माटी ने स्वस्थ भी रखे। बनाने री सामान्य जो विधि की बात करा तो इन वास्ते बेड तैयार करना पड़े, यानी कि छायादार जगह माते पक्की या कच्ची जमीन माते गोबर और कचरे रो लगे टगे 2-3 फुट चौड़ो ढेर, यानी कि जगह ने बेड अपन कह सकें वो बनायो जावे और भी में पचे केंचुआ छोड़ जावे। सड़ियुड़े और ठंडे गोबर रमा आची किस्म रा केंचुआ बिरमा ने छोड़ी जे और पचे भी में नमी बनायोड़ी राखनी पड़े। केंचुआ ने जीवित राखण सारू टेम टेम माते पानी रो छिड़काव कर और उन बेड माते नमी और बोरी या पराली है जो ढककर राखना जरूरी है। खाद तैयार होने की बात करा तो लगे टगे 45-90 दिनार माने केंचुआ कचरे ने भुरभुरी काली और जड़ी चायरी पत्ती वे नी बेड़ी है जो दाणेदार खाद रे माने है जो बदल देवे। आ केंचुआ खाद बनाने की सरल कम लागत वाली वैज्ञानिक विधि है, जके शू भाई कहीं है कि भाई थोड़ी सी खाद रे माने या जका भाई पशुधन रखे है भाई आप 2-4 पशु है जो इन खाद ने घनी जगह न मान देव वास्ते उपजाऊ खाद है जो तैयार कर सके। अत भाई बात हुई वर्मी कंपोस्टरी जैविक खादरी केंचुआ खादरी बात हुई एरा में होना दूजी कामरी बात।
1: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
2: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: हाँ तो भाई चौपाल सू टेमो टेम जानकारी धीरे स्थिर रहे विशेषज्ञ जानकार हटावे एडीज आपने सुना रहे हैं आज एक भेंट वार्ता जकी सुनो। किसान भाई टेम टेम सारू जानकार अपन अठे पुगे और वाली जानकारी पाछी आप तय पुगे। इणिज भांत गांव टांकलेरा प्रगतिशील किसान लिखमा राम जी अपन अठे पधारिया है, तो आनो स्वागत करा। राम राम सा।
3: राम राम सा।
0: लिखमा राम जी अबार कई काम धंधा हुआ है?

0: अबार तो देखो यही खेती बाड़ी वाला ही काम धंधा चल रहा है।
1: खेती बाड़ी धंधा साले खेती कितने टाइम कर रहे हो?
0: अबे खेती तो यूं देखा जना अपने पुरुज करता ही आया, पर आज री समय में इंदे कर मैं 15-20 सालों ये खेती रा काम में आयुड़ हूँ।
1: भाई 15-20 सालों लगे टके खेती रे काम में लाग जुड़ा
0: हाँ
1: हो,
0: सर।
1: तो कहीं कोई पानी रो साधन है या बरसात है?
0: नहीं अपन यूं तो बरसात माते इस निर्भर हाँ, एक पानी रो फार्म पॉइंट बनायेड़ो है जेका नफा खेत अड़ाई के वहां।
1: भाई खेत तलाई बनाई उड़ी खेत में
0: हाँ
1: कितनी मोटी पद बिरखा रो पानी बेड़ो हुआ भी में
0: सब बरसात रोज पानी ये बेड़ो कर एर दोनों ही काम कर ला सा। बीरमाई ने मारे बागवानी भी लगाई उड़ी है,
1: ओ
0: बागवानी रमाई ने विशेष करने अपने बोर है जगह अबार किसान बयान क्यों कि मुन्ना पाली खेती है।
1: भाई कई तरह की खेती किसान भाई करे यार, कई यार पानी कमती है, कई यार बत तो है, और आप रहे जो को कहीं कहीं बागवानी मान लगाए उड़ा।
0: अब बागवानी में गिना वजना तो साहब घना ही सारा पौधा लगेड़ा है, और मैं एक प्राकृतिक और प्रकृति रे प्रेमी आदमी हूँ। जो मने यहाँ लाग्यो के आपा दुजोड़ी चीजा ने छोड़ आपा प्रकृति रे हाथ रहवानी जना प्रकृति अपनों भी साथ देवेला।
1: जना प्रकृति साथ देश
0: तो मैं कोरोना रमाई ने ये चीज रे मैंने जचर मन लगाए काम करनो स्टार्ट कर दियो। जकार महीने में देख लो आप लकड़ी वाला पौधा भी लगेड़ा है खूब सारा और मेडिसिन वाला भी लगेड़ा है। तो मैं आ देखती तका कि किसान हाथों हाथ न पाने किसान सोचा करे, हाथों हाथ न पाली चीज देखी जन मने बेर रा पौधा घना हकरा लग गया सा।
1: तो दूजी भी आप रे बगीचे मान कई तरह की फसल लाग जुड़ी।
0: हाँ ज्यो अपने ताइवान पिंक अमरूद लगेड़ा है सा जका आप यूं स्वाद रमाई ने टेस्ट करो नहीं तो एक बार में आप यूं मन मोहित हो जाओ सा।
1: एडा अमरूद,
0: ई हिसाब रा अपने 18 वातावरण में ने अमरूद उत्पादन हुआ है सा।
1: ओहो, और कहीं लगे उड़ा?
0: अमरूद है, किन्नू भी है अपन कने, और मौसमी भी लगेड़ी है, अंजीर भी मैं ट्राई करी हूँ, अंजीर भी अपन अटे लागेड़ो है।
1: भाई अपने धरती मान है जो की बागवानी आप बता रहे हो बे हुए।
0: देखो सब थोड़ी तो आदमी ने मेहनत करनी पड़े, और जो को आदमी मेहनत करे मारे हिसाब नागौरी धरती माते सब तरह रो रूंकड़ो लाग सके।
1: ओ मेहनत मोटी चीज।
0: मेहनत ही आदमी ने सफलता में आगे आगे बढ़ा सके सा।
1: खास कर लिखमलाम जी आज आप बात करा बैर री खेती री बोल्डिया री बात करा,
0: हाँ
1: तो बैर री है जो को जो कोई भाई लगाना चाहे है खेती करनी चाहे तो इन वास्ते हेंगा पहले कहीं करना पड़े।
0: बिन ऐसा देखो जिमी आप चैत वैसाख रो महीनो के वहां वैसाख रा महीना में जे वो आदमी लगावना चाहे कोई भी किसान भाई तो बिने 20-20 फुट छेतियों 3-3 फुट ऊंडा खाडा कर देवे।
1: उनाले टाइम में
0: उन्हाड़ा री
1: बैसाख
0: टेम
1: महीने।
0: भी में कहीं हुए कि जो का छोटा मोटा जीव जंतु है हानिकारक जका मर जावे और वे पूरी बढ़तियां महीने बड़न खाडा परिपक्व हो जावे।
1: बिल्कुल सा खाडा कर दिया और पचे।
0: वीर माय ने पचे अपने जीव की अबे वीर का मंडनाली है, वीर का मंडनी स्थिति आवे भी टेम रे माय ने अपन बाने खाडा ने खात वगैरह जीव गोबर खात है भाई रेत है बिन पाची मिला और बिन माय ने पाची भरदा और एक ही वर्षा जीवी उजवे वीरू फोर फैला अपने भाई गवर्नमेंट री जेकी नर्सरियां है अपने जानी पहचानी उड़ी वीर महीनू बढ़िया किस्म देख जो इर महीने 3-4 किस्म आवे अपन अटारी जो गोला है उमरान है कश्मीरी एप्पल वेरा आया करे यूं करन काशी 8-10 वेरायटियां आवे पर अपने हिसाब सब बढ़िया गोला और कश्मीरी बेर है जो को अट बढ़िया लागियोड़ो
1: भाई
0: है।
1: पहले तो खाड़ा खोद दिया, पस जो ऊपर देखो बिरका रही चौमासे रही रुत आवे जन, पस बिरमा खाद भर देनी मिट्टी भर देनी और पचे पौध लानी पड़े।
0: पौध अपने थोड़ी अपने हिसाब कहीं पच भीड़ बड़ा को हो जावे जन अपन एक तो देख रहे कन कौन लाई जे नहीं 5 दिन पहला हम अपन घरे लिया वानी तो भी ना पानी पाईदार अपन अटारो जो को वातावरण है वो सेन भी कर ले बा के भाई अपन एक गांव दूजे गांव में लाया जना पौधा भी थोड़ो आ चीज माने के भाई अपन दूजा गाया जन वो थोड़ो संकोच करे
1: भाई जगह नो फर्क पड़े हाँ। जगह बदली दे दे कई बोर तो देखो लिखमा राम जी एड़ा वे जिका है जिको इतो बामे रस इतो मिठास वे और कया में कम हुए इनमें पच कहीं न्यार न्यार कोई क्वालिटी
0: हाँ इर महीने किस्म।

0: फरक कोन पड़िया करे आपण नागौर आपण जो पश्चिमी राजस्थान आवे इर महीने भलाई की हुई तरारो जाड़ीरो कांटीलो पौधो आराम लाग जावे
1: आराम लाग जावे तो वासा लार इने हिसाब है जो पौधो लगा ले पछे बिर माने और कई देखभाल है जो पछ करनी पड़े
0: जी ही अपने खिचड़ी आउनी टेम हुए और चिरमी आकार रा इन्हें किया करा कि चिरमी आकार रा बोर बनगा जन साहब बिर महीने एक दो स्प्रे करनी पड़े
1: भाई चिर में जिता उजव है जन बीर माँ स्प्रे करनी
0: हाँ बीर महीने एक दो स्प्रे कर दो दस दिन अंतराल माते दूसरी स्प्रे दूजड़ी स्प्रे कर दो मातो अभ्यसा जैविक माई नायुड़ा हाँ जो को ज्यादातर जैविक ही करा जो को नीम नीमड़ो है आकड़ो है धतुरो है गोमूत्र है ईरो एक स्प्रे बना राग दा जिमी चिरमी आकार रवे जना एक हाथी जचार स्प्रे कर दा वीर माते
1: भाई जो किसान भाई जो मान लो आप है जो को जैविक खेती कर रहा हो चाहे बोरी बोर चाहे दूधी
0: हाँ
1: तो इन्हें बात बेरी खेती जकी है इन माने भाई जैविक छिड़काव कर भी कर सके दूधी रसायन जरूरत को
0: नहीं ज्यादा जरूरत कौन पड़े इरमा रसायनरी वैसे यूं देखा जना अबे भाई के खुद आतू नहीं बनावनी छावे जना आज बाजार रमाइने नीम ऑयल घणो ही आवे बढ़िया पीपीएम रो देख जो 1000 PPM तक रो इर महीने नीम ऑयल आवे भी ऑयलू आप स्प्रे कर दो नहीं तो भी बोर में लट कौन बने
1: भी में लट कौन बने
0: हाँ
1: और इन माने कई हावचेती राखनी पड़े जो बोर मान लो लाग गया मोटा हो रिया है बीम पच पानी टेमो टेम देनो पड़े कितो पानी सही जेम
0: इमें ज्यादा पानी री जरूरत कौन रे वे ज्यादातर तो अपने बरसात रे दिनार महीने खूब उजावे बढ़िया उजावे और बरसात रे बाद रे महीने जरूरत पड़े जरा आप बीन देख ला बोर ने के भाई इना पानी री जरूरत है तो आप एक दो पानी बीने पाई सका
1: कई बार कई पौधा में लिखमा राम जी यूं है कि फूल लागे जड़ जावे एड़ी भी इनमें आवे कहीं समझे
0: हाँ बा कहीं है कि थोड़ी किसान भैरी गलती हो जावे वे कहीं करे कि जो बोर ले लिया आप और लिया बाद में वे देखे अबे तो इरो चारो भी आप काम ले ले वहां जना वे कहीं करे कि भी टेम वे कटाई छटाई कर देवे
1: ओ कटाई कर देवे
0: हाँ बा कटाई है जी की आगे जार समस्या कर देवे
1: ओ तो गणकरी ठोट देखा लिखमा राम जी के बोर री फसल लिया बाद में है जो वह कटाई करे है किसान भाई तो कहीं बंद बार नहीं करनी चाहिए
0: नहीं वह कटाई है जो की जुलाई रे पहला पखवाड़े या मई रे जून रे लास्ट हफ्ता में करनी चाहिए वीरू कहीं है कि जो बरसात रे दिन आवे नहीं जन कूफड़ा काट रहा काटे जना अपन जो को अपन देसी भाषा अपनी मारवाड़ी भाषा में कहवा के भाई आसो जाली ओकड़ ओकल ही समस्या करे अपन सब ज्यादा बेर में
1: इनने अलावा जहां बेर की खेती की बात करा तो इनमें और भी कोई रोग लागता रहे के जके कई बार है जो को बोर काना हो जावे कई बार बड़वार में छोटा मोटा रह जावे
0: नहीं एड़ी कोई,
1: कोई लट लाग जावे
0: लट कहवा नहीं आपने साहब के जो चिरमी आकार हुए नहीं भी टेम हगरी स्प्रे कर देवे नहीं तो बीर बाद में बोर काणो उन सवाल ही कौन रहे
1: पचे कोई खामी को रहे
0: नहीं कोई खामी नहीं रहे वीर में और जिमी आप री रुत आवेला सर्दी रो और भी रुत रमाइने आपने बोर एकदम मीठो घटला देला सा
1: कितना महीना रो टाइम है जो को इन है फसल में लागे
0: हाँ यू देखा जना साहब वो तो बगीचो है रुत आया फल हुए और फल लागिया बाद में आ 3 महीना में अपनी फसल आ जावे पूरी
1: और एक जो मान लो बोल्डी रुपेड है वो कितने टाइम तक रहे
0: हाँ यू मोटा मोटी देखा जना साहब 15-20 साल तक हकरो आपने उत्पादन दे देवे
1: ओ तो लंबे टाइम रहे
0: लंबे टाइम तक वो काम देवे और मारे हिसाब हूँ किसान रो हितकारी पौधो है वो
1: घणो जोरदार है लिखमा राम जी आ तो बात जोरदार हुई कई अपन किसान भाई यूं कहे एक भाई अपन दूजी झाड़ बोल डे दूजी खेता में लागी उड़ी हीर बीर माते लार है जो को कलम चढ़ाए दीर वा कलम है जो को अपन बो बेर है जो को पैम ची बन गई और
0: हाँ बिल्कुल आ बात आप सही बताई हो के भाई आप जो बोल्डी ने फैलना काट ली चेत आला महीना में चेत में बोल्डी ने काटिया रे बाद में जी बरसात रही रुत आवे नहीं अपन कने जे एकादी बोल्डी भी कलम री हुए या आगती पागती कटे भी हुए कोई भाई सेना रे बट वहां पर वो कलम ला रही माते अपन चढ़ा सका सा
1: भाई कलम भी चढ़ा कलम चढ़ाने में कहीं हावचेती रखनी पड़े
0: कलम चढ़ावना में देखो सा एक तो ज्यादा पुरानी बोल्डी नहीं होनी आ तो आतरी महीना दो में 2-3 महीना री कुंफड़ हुए भी कुंफड़ माते आराम अपन बैठा सका
1: कई बोल्डिया।

0: जैसे मोटा पेड़ है तो बारह माते कहीं पूरा बारह डाला काटना पड़े या एक हिस्से में?
1: नहीं, बिचू काटनी पड़ी भी ने, जिमी बीर माते हूँ डाली फाची फूटी नी नवी कुंपल भी कुंपल माता अपना आराम कलम चढ़ा सका
0: कलम चढ़ा सक और इनमें कोई हावचेती रखनी पड़े कलम चढ़ाती टाइम?
1: हाँ, कलम चढ़ाती टाइम अपने समय रो ध्यान रखनो पड़े, ज्यादा पुरानी भी कलम कलम नहीं होनी, और आ तो आती इन्हें 15-20 सेकंड में जिमी आप भी दूसरी कलम बोली मा तू ले यार इर माते बा आंख चिपका आई देनी चाहिए। एक इर महीने विशेष ज्यादातर ध्यान वही रखनो है कि जो आप ई बोली माते हूँ आप कलम ले और दूसरी बोली मात लगा मा बीरो खड़ो करा ना आप वो एकदम साइज में बराबर रखनो
0: साइज बराबर होना चाहिए।
1: और भी ने हकरो टेप करन छोड़ दो जो आप रे शादी ना में कुंपल आर।
0: तो लक्ष्मण राम जी, हमें जका किसान भाई चावे एक भाई बोल्डिया रो बगीचो लगाना चावा वाने इन बारे में और आप है जो कहीं कहना चाहो कहीं सावचेती रखनी जरूरी?
1: अबे ज्यादा तो सब किसान भाई खुद ही समझदार बहुत है सा और कहीं कहवा किसाना ने और मारे हिसाब आउनाला दिनार महीने आ बोल्डी है जी की हकड़ा किसाना ने घनी हकरी लागेला सा।
0: ओ, इतनी पैदावारी लाभ रो सौदो?
1: लाभ रो सौदो ऐसा। और गांव गांव में आज देखा तो कई गांव में घना ही हरा बगीचा लागंड होगा है तो लोग इरे देखने घना ही दौड़ दौड़न काम भी कर रही है।
0: बोल्डिया रे जो मान लो बगीचा लगा दी और बिचे जगह खाली जगह पड़ी बिन मान कहीं भाई फसल ले सके?
1: हाँ, फसल ले सके सर, चौमा सारी फसल ले सके और अपने हियाड़ वाली भी फसल ले सके भी कन पानी री उपलब्धता है तो
0: अगर पानी है तो उन जगह में फसल भी ले सके।
1: मैं कहने अब बार बगीचा महीने है तो मैं सब पूरी की पूरी जमी काम लेऊंगा।
0: ओ तो वासा लिखमा राम जी, आप है जो को बैरी उन्नत खेती इन बारे में आ रहे जो को किसान भाई ने इतना आप रा विचार बताया जानकारी दी इन वास्ते आप धन्यवाद। राम राम सा।
1: राम राम सा।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
5: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: हाँ तो भैया, टांक ले रहा लिखमा राम जी री बैर री उन्नत खेती री बात होनी और कई तरह री काम री बात होनी, हमें हिंजारो टाइम आपने उड़ी वेला कोई गीत भजन री तो सुना रही हाँ, राम निवास राव रो गायडो आ भजन।
6: अरे एक घड़ी तू मारे सामुई भाई, ओ गिरधरी महाराजी, एक घड़ी तू मारे सामुई भाई।

हाँ तो भैया रामनिवास राव रो गायडो भजन आप तय पूग्यो और हमें देखा हाँ कि भाई कार्यक्रम में बातें करना तो मन करे पर कार्यक्रम टाइम से जुड़ी उड़ा

और टाइम वो बंदूड़ा कार्यक्रम टाइम रहे मुझे चालनो पड़े। और आपा ने उड़ीक आपने किसान भाई ने उड़ीक रुत में एक मेरो भी वो मानना है कि भाई इन दिनों मान अजय है जो को बिरखारी है जो को उम्मीद बनी उड़ी है कई थोड़ा है जो को आज भी बिरखा हुई जयपुर सोए माधोपुर अटके सेंटर छिड़का और बिरखा हुई एर जो को मानसून की बात करा तो अबार अजय है। सावण में तो देखो कई बार तो टेमो टेम इंद्र भगवान मेहरबान हो जावे एर कदी देखो के रूठ भी जावे तो आप अड़ी उम्मीद करा हाँ कि भाई जका भाई बिरखा ने अड़ी के बारे उम्मीद पूरी हुई और इंद्र भगवान राजी हुई। जका काम अपन देखो टेमो टेम करना है जो खरपतवार निकालना यानी कि निनाण करने बात करा तो जकी भी फसल भाया ने बाणी बायुड़ी है एर जका खरपतवार ने निकाले वह है जो को टेम माते ध्यान रखे कि भाई खरपतवार निकाल ला अपनी फसल ने जो को तैयार रखे तो जो ही बिरखा हुए फसल की पैदावार है जो को बदे है पकाओ जो को उगियो बाहरों वह पर भाई है जो को फसल पकाओ माते आया माते भी कटाई में भी ला गई तो टेमो टेम है जो को खेती रो ध्यान रखना जरूरी। हमें भया घड़ी करे इशारो तो अपन आज रे खेती बाड़ी कार्यक्रम टाइम यो अठाई पूरा आपरा रणवीर भाई ने दिरा श्री करा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए।
0: जी, और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
0: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं।

0: हैं।
1: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
0: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
0: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
0: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय।
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ

0: की सबसे ऊंची चोटी
1: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
0: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
1: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
0: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ आ गए।
1: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
2: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
2: क्या 20 करोड़ साल?
0: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
2: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
0: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित, तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
2: रुको, मैं बताती हूँ।
0: तुम बताओ।
2: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी तो कहते हैं।
0: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
0: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
0: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे, एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर, ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा, अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर, आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा, उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
3: सर, मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में?
0: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
3: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा

0: हिमालय, तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान है। आमतौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, तेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि तेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना? कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
4: Marvelous.
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
3: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
2: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल

0: बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
1: मूर्ति के हाथ नहीं थे, लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
0: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
1: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
2: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
3: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
0: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
1: उस मूर्तिकार ने बताया,
4: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
0: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
5: ग्रेट, मार्वेलस।
3: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
5: वंडरफुल।
6: हाँ, हम सहमत हैं।
0: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
4: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है, यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
0: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
1: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
0: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
1: कहीं ऐसा ना हो कि
0: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
8: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास, भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत दिल से। आज की इस दिल से प्रोग्राम में पहली फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं दिनेश वर्मा। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म आहिस्ता आहिस्ता का ये गाना।

ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी सुलक्षणा पंडित की, और ये है अगली फरमाइश जो हमें मिली है सादुल शहर ज़िला श्रीगंगानगर से। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म सिंदूर का ये गाना।

ये है दिल से कार्यक्रम की अगली फरमाइश। भेजने वाले हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल, जिला नांदेड़, यताला, महाराष्ट्र से। इन्होंने सुनना चाहा है चुपके चुपके फिल्म का ये गाना।

यह है अगली फरमाइश भेजने वाले हैं। राम कुमार रिवार्ड, चंद्रकला रिवार्ड, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पदमपुर जिला श्री गंगानगर से, और संतोष खड़ग से और विनोद खड़ से, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म महबूबा का ये गाना।

यह कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। इन्होंने फरमाइश की है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म मैंने प्यार किया का ये गाना।

अगली फरमाइश भेजने वाले हैं डेरा पाटन गुजरात से धीरज बी रबारी, और बने बुजुर्ग पले राग टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से भेजने वाले हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म कभी कभी का ये गाना।

ये है अगली पेशकश भेजने वाले हैं धर्मेंद्र सिपा, कपिल सिपा, ईशान सिपा, पूजा परिहार भोपाल का राजस्थान से, और मिंटू थॉमस, पंकी लवली, आया तिरोड़ा, बड़िंग खेड़ा पंजाब से। इन्होंने सुनना चाहे गीत फिल्म का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे सोशल मीडिया आधारित फिल्म संगीत, फरमाइशी फिल्म संगीत दिल से। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि काल में इसका 30 मिनट हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विविधा। विविधा के अंतर्गत लीजिए सुनिए ये झलकी, गुड तेल।

0: गुड़ मीठा गुड़ मीठा गुड़
1: तेल ले लो तेल तेल तेल तेल वाला तेल तेल
0: गुड़ ले लो गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ मीठा गुड़
1: तेल तेल तेल तेल वाला तेल तेल तेल वाला तेल ले लो शुद्ध गाने का ताजा तेल।
0: अरे वे तू चुपचाप रहा।
1: मैं क्यों चुपचाप रहूं, मेरी भी दुकान है।
0: अरे काहे की दुकान है, कोई ग्राहक तो आ नहीं रहा,
1: तो मैं क्या करूं। तेल वाला तेल तेल
0: से इस आदमी ने मेरे सामने दुकान खोली है, तब से मेरे ग्राहक आने बंद हो गए।
1: अरे मैंने क्या दुकान खोली है, मेरी तो पहले से दुकान थी यहाँ। दुकान तो तूने खोली है बाद में।
0: अरे तो मुझे क्या पता था कि यहाँ दुकान खोलूंगा तो ग्राहक नहीं आएंगे।
1: मुझे भी क्या पता था, जब से तू दुकान खोलेगा तो ग्राहक ही नहीं आएंगे। तेल वाला तेल तेल तेल तेल
0: गुड़ वाला गुड़ वाला गुड़ गुड़ गुड़ गुड़
2: होगा वो ग्राहक आ रहा देख। अरे ग्राहक है ना।
0: अरे आओ आओ भाई साहब। नमस्कार नमस्कार
3: नमस्कार।
0: गुड़ ले जाओ भाई साहब, मीठा गुड़ गुड़ गुड़ ले जाओ।
3: मैं तो पीपा ले आता हूँ, साल भर चलता है।
1: भाई साहब तेल ले लो शुद्ध घानी का ताजा तेल।
3: नहीं भैया, मैं तो बोरी ले आता हूँ, साल भर चलता है।
1: अरे यार ये मेरे तेल की बोरी कैसे लाता है
0: यार, जैसे गुड़ का पीपा लाता है।
1: अजीब अजीब लोग हैं, अब क्या करें। अरे तेल ले लो
0: यार।
1: क्या चुप रहा,
0: कोई नहीं आ रहा, क्या करें, टाइम पास कैसे होगा।
4: जय शिव शंकर।
0: अरे पंडित जी आ गए, पंडित जी।
4: जय जय जय शिव शंकर।
0: पंडित जी राम राम राम राम।
4: जीते रहो भाई जीते रहो।
0: पंडित जी गुड़ ले जाओ, गुड़ गुड़ बहुत मीठा गुड़ है, गुड़
4: बहुत मीठा है क्या। ला दे जरा सा।
0: लो पंडित जी लो।
4: वाह बहुत मीठा है, वाह जय जय शंकर जय शिव शंकर।
1: पंडित जी महाराज तेल ले लो ना, शुद्ध घानी का ताजा तेल।
4: शुद्ध घानी का है क्या।
1: शुद्ध घानी का
4: हजरा दिखाए एक दफे।
1: ये लो
4: तुम दे दे। ला भाई ला। अरे वाह जय शनि देवता जय
1: शनि देवता।
0: अरे क्या हो रहा है,
1: अरे क्या नाटक है, कोई आता है तो पैसे नहीं देता और वैसे कोई आता ही नहीं है।
0: करें यार एक काम करते हैं, एक काम करना अपना शेर शायरी करते हैं।
1: शेर शायरी
0: हाँ।
1: इससे क्या ग्राहकी होगी क्या।
0: अरे क्या पता हो जाए यार,
1: शेर शायरी से ग्राहकी
0: हो जाएगी।
1: तो मेरे को बहुत अच्छे अच्छे शेर आते हैं।
0: तेरे को आते हैं
1: हाँ।
4: मिर्चा गालिब
1: है ना,
0: मिर्चा गालिब के
1: हाँ।
0: सुना
1: हाँ। बहुत जोरदार शेर है, देख स्टार्ट करता हूं मैं।
0: हाँ सुना।
1: आज की रात
0: हाँ।
1: आज की रात आसमान में तारे कुछ ऐसे चमक रहे हैं।
0: आज की रात आसमान में तारे कुछ ऐसे चमक रहे हैं।
1: अरे ऐसे नहीं यार, बीच में मत बोल। आज की रात आसमान में तारे कुछ ऐसे चमक रहे हैं।
0: कैसे चमक रहे हैं।
1: जैसे कल चमक रहे थे, है ना, देख जोरदार।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
1: है ना।
0: ऐसे शेर तो मेरे को भी आते हैं।
1: आते क्या
0: हाँ।
1: सुनाते है।
0: सुनाऊं
1: हाँ।
0: सुन देख
1: हाँ।
0: तन्हाई को चीरती हुई दूर से एक आवाज आई।
1: तन्हाई को चीरती हुई दूर से एक आवाज आई।
0: तन्हाई को चीरती हुई दूर से एक आवाज आई।
1: क्या

0: ले लो।
1: अरे ठेले बेच रहा, ठेले वाला है, आवाज आई दूर से,
0: तन्हाई को चीर दी ना आवाज ने।
1: अरे क्या आवाज चीर दी, इससे बड़ा शेर मेरे पास है।
0: ओ तेरे पास शेर,
1: सुनाओ।
0: वो ग्राह करा,
1: कौन था
0: वो ग्राह करा? भाई साहब, राम राम।
1: राम राम।
0: गुड़ ले लो भाई साहब,
1: गुड़ ले लो। गुड़ कहाँ तक पढ़ा लिखा है?
0: मैं तो आठवीं फेल हूँ।
1: आठवीं फेल हूँ तभी गुड़ बेच रहा है? गुड़ी
0: भाई साहब, तेल ले लो,
1: तेल ले लो। ये देखो, उधर गुड़ ले लो, इधर तेल ले लो। तू कहाँ तक पढ़ा लिखा है?
0: मैं आठवीं में तीन बार फेल।
1: आठवीं में तीन बार फेल तभी तेल बेच रहा है? तेली।
0: अरे भाई साहब, आप कहाँ तक पढ़ लिए जो बताना जरा।
1: मैं तो बीए पास हूँ।
0: अच्छा, बीए पास हूँ। क्या करते हो भाई साहब?
1: मेरी दुकान है, खुद की शॉप है, स्टेशन के सामने है।
0: काहे की है?
1: भीख मांगने की।
0: जी बात भी।
2: अरे क्या है, अजी अजी से लोग आ रहे हैं यार।
0: तो टाइम ही पास नहीं हो रहा यार,
2: तो क्या करें अब
0: यार? ऐसा करना, एक शेर और सुना यार।
2: एक शेर और सुनाओ। मैं सुनाता हूँ, है ना।
0: मैंने तुझे प्यार किया।
2: वाह,
0: ध्यान से सुनना।
2: हाँ सुन रहा हूँ।
0: मैंने तुझे प्यार किया, तेरे बाप ने मुझे पीटा।
2: ओहो,
0: मैंने तुझे प्यार किया और तेरे बाप ने मुझे पीटा।
2: हाँ,
0: मैंने तुझे प्यार किया, तेरे बाप ने मुझे पीटा।
2: वाह,
0: और साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा।
2: वाह वाह वाह।
0: और तन की शक्ति, मन की शक्ति,
2: तेरा गुड़ मीठा,
0: तेरा गुड़ मीठा मीठा।
2: यार एक शेर और सुनाता
0: हूँ। सुना सुना,
2: मेरे को अभी भी याद आया।
0: सुना,
2: बहुत बढ़िया शेर है।
0: सुना
2: सुन।
0: हाँ,
2: कि चश्मा लगाता हूँ।
0: हाँ,
2: चश्मा लगाता हूँ तो कोई लड़की देखती नहीं।
0: वाह वाह।
2: चश्मा लगाता हूँ तो कोई लड़की देखती नहीं।
0: हाँ,
2: और चश्मा हटाता हूँ तो दिखती नहीं।
0: तेरे को चश्मा लगाता है तब भी नहीं दिखती, और लगाता है तब भी नहीं दिखती।
2: वो तो ग्राहक आया, ग्राहक आया, ग्राहक आ गया, ग्राहक आ गया। अब तो मेरा गुड़ बिकेगा ही, बिकेगा भाई, बिकेगा। भाई साहब, गुड़ लोगे क्या? गुड़ ले लो, गुड़।
3: अरे क्यों ले लो भाई तेरा गुड़?
2: अरे ले लो भाई साहब, गुड़ ले लो।
3: जा पढ़ाई कर, पढ़ाई
2: पढ़ाई।
0: भाई साहब, तेल तो ले लो।
3: तेल लो, तेल ले लो। अरे भाई क्यों ले लूं तेरा तेल?
2: तो क्या,
3: अरे जाकर अपनी पढ़ाई कर, पढ़ाई
2: पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। लगता है इसका बेटा फेल हो गया होगा, पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है।
0: अजीब आदमी है यार। एक शेर और सुनाऊं मैं?
2: अरे सुना यार,
0: बहुत जोरदार
2: बढ़िया शेर
0: है ना। सुनाऊं?
2: हाँ सुना।
0: मैं तेरा चांद तो तू मेरी चकोरी।
2: वाह वाह।
0: मैं तेरा चांद तो तू मेरी चकोरी।
2: मैं तेरा चांद और तू मेरी चकोरी।
0: हाँ,
2: और मैं तेरा समोसा तो तू मेरी
0: कचोरी।
2: यार ये तो अरे वो देखो आ रहा पतला सा ग्राहक, ये तो गुड़ जरूर खाएगा।
0: है
2: गुड़ खा के मोटा होगा। आजा आजा आजा आजा आजा। अबे आना है। हाँ आ रहा ग्राहक, आ रहा वो, आ रहा तो लेगा ही गुड़। आओ भाई साहब, आओ आजा आजा। क्या चाहिए भाई साहब?
3: नमक दे दो। नमक?
2: नमक?
3: हाँ नमक।
2: नमक तो नहीं है भाई साहब हमारे पास, हमारा तो गुड़ की दुकान है। गुड़ ले जाओ, मीठा गुड़।
3: सब्जी के अंदर गुड़ नहीं डलता
2: है?
3: नहीं तो लट्टा बन जाता है वो।
2: अच्छा,
3: नमक ही डलता है। नमक चाहिए मुझे।
2: तो नमक हमारे यहाँ नहीं मिलता, गुड़ की दुकान है।
3: तो मैं क्या करूँ, मेरे को तो नमक चाहिए ना।
2: अरे तो नमक नहीं है हमारे पास।
3: अरे तो आपने तो बुलाया, आवाज दे के वैसा इधर आओ इधर आओ।
2: अरे तो हम तो गुड़ बेचते हैं यार, गुड़ के लिए बुलाया।
3: तो गुड़ ही बेचते हो?
2: हाँ।
3: नमक नहीं बेचते?
2: अरे नहीं बेचते यार।
3: अच्छा एक काम करो फिर।
2: हाँ बताओ।
3: साबुन दे दो। साबुन?
2: साबुन नहीं है यार, खाली गुड़ है मेरी दुकान में। गुड़।
3: साबुन भी नहीं है?
2: अरे नहीं है यार।
3: चलो दो किलो आटा दो।
2: फिर से कह दिया ना, नहीं है कुछ भी, खाली गुड़ है मेरे पास।
3: एक काम करो आप।
2: क्या है?
3: ताला लगा दो दुकान पे।
2: हाँ क्यों?
3: नमक नहीं, आटा नहीं है, बेसन नहीं है।
2: क्या आदमी है?
3: यहाँ पे कोई है क्या?
2: हाँ मैं हूँ ना। आओ भाई साहब आओ।
3: वो नमक दे दो भाई साहब।
2: नमक?
3: हाँ
2: जी भाई साहब, मेरी दुकान में तेल मिलता है।
3: तेल नहीं मिलता है?
2: हाँ तेल मिलता है।
3: कौन सा तेल देते हो आप?
2: वो शुद्ध घाणी का ताजा तेल।
3: ये घाणी क्या होती है?
2: वो होती है ना लकड़ी की, जिसमें कोलू घूमता है, तेल निकलता है फिर।
3: अच्छा तेल निकलता है?
2: हाँ,
3: नमक नहीं आता?
2: नमक नहीं निकलता भाई साहब, तेल ही निकलता है।
3: पर मेरे को तो भाई साहब नमक चाहिए था ना।
2: मेरी दुकान में नहीं है पैसा।
3: अच्छा नमक नहीं है तो साबुन दे दो।
2: अरे साबुन नहीं है यार, तेल है दुकान में सिर्फ। यानी लिख रखा तेल ही।
3: अच्छा अच्छा। नहीं मैं तो तेल से थोड़ी नहाऊंगा, मतलब साबुन से नहाता हूँ।
2: तो साबुन से नहाता है तो तेल मिलता है ना दुकान में? साबुन की दुकान में जा भैया यार।
3: अच्छा समझ गया।
2: हाँ।
3: साबुन नहीं है?
2: हाँ, नहीं।
3: लाओ फिर दो किलो आटा दे दो।
2: क्या दे दू?
3: आटा दे दो।
2: आटा दू?
3: हाँ
2: ये ले आटा।
3: कितने पैसे हुए?
2: अजीब अजीब लोग बाग आते हैं।
0: वही तो यार, परेशान कर दिया यार।
2: अब क्या करें यार?
0: कह रहे हैं गुड़ की दुकान है, नमक दे दो आटा दो। क्या करें यार, ग्राहकी करनी पड़ेगी, इसमें तो बोनी भी नहीं हुई।
2: अरे लेकिन अब क्या करें?
0: और यार एक आइडिया है।
2: आइडिया?
0: हाँ।
2: क्या?
0: एक काम करते हैं।
2: हाँ
0: है ना। देख तू ऐसा कर।
2: हाँ।
0: तू मेरे पास है ना गुड़ खरीदने आ, उसके बाद मैं तेरे पास तेल खरीदने आऊंगा, कम से कम बोनी तो होगी यार।
2: मैं तेरे पास गुड़ खरीदने?
0: हाँ तू मेरे पास गुड़ खरीदने आ,
2: और फिर तू मेरे पास तेल खरीदने।
0: हाँ मैं तेरे पास तेल खरीदने आऊंगा।
2: हाँ यार ये आइडिया ठीक है यार,
0: बिल्कुल ठीक है ना।
2: आता हूँ ना, देख
0: आ जा।
2: आता हूँ।

0: आ जाओ
1: आ जाओ
0: आजा।
2: भाई साहब
0: हाँ
2: एक लीटर गुड़ दे दो।
0: है? अबे अबे गुड़ किलो में आता है लीटर में नहीं आता
2: है?
0: लीटर में नहीं आता गुड़।
2: अच्छा, किलो में आता है।
0: हाँ, किलो में आता है। यूं बोल एक किलो गुड़ दे दो।
2: एक किलो गुड़ दे दो।
0: हाँ
2: मैं दोबारा आता हूँ।
0: हाँ दोबारा
2: दोबारा आ रहा हूँ।
0: हाँ
1: आ जाओ
0: आ जाओ
1: आ जाओ
0: अबे आ जा
2: भाई साहब।
0: हाँ
2: एक किलो गुड़ दे दो।
0: हाँ।
2: बोतल में।
0: हाँ?
2: अबे तेरे से कितनी बार कहा गुड़ बोतल में आएगा क्या?
1: तो फिर काम
0: है गुड़ ठोस होता है यार, गुड़ थैली में देते हैं। तू यूं बोल एक किलो गुड़ दे दो केवल, बस बोतल बोतल मत बोल।
2: मेरे को नहीं आता है कुछ।
0: अरे यार तू अजीब आदमी। तू देख मेरी दुकान में बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ कि गुड़ कैसे मांगते हैं।
2: हाँ, मैं तेरी दुकान में।
0: हाँ, तू मेरी दुकान में।
2: हाँ, तू आ
0: है ना।
2: हाँ,
0: मैं
2: तू
0: आ रहा हूँ। मैं
2: आ जा
0: ना।
1: आ जाओ
2: आ जाओ
1: आ जाओ।
0: अच्छा भाई साहब।
2: हाँ
0: एक किलो गुड़ देना।
2: बोतल लाया है।
0: हाँ

जल्दी झलकी अभी आपने सुनी गुड़तेल, ले सुनिए फिल्म संगीत। यह है फिल्म संगीत की पेशकश, फिल्म का नाम काला पत्थर। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

0: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर की चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार संदेश से हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डीकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
2: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
3: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है।

0: क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: विद अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट।
2: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
0: भारत को 70 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले चार वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्रिस्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
3: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित करके हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
2: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही

0: चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्सलफेन में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत की टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भा

0: अवस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जल स्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है दर्द भरे गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

ब्रेक से पहले आप गाना आपने सुना, हमने लिया था फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से, आवाज़ किशोर कुमार की थी, और ये है दर्द भरे गीत का अगला गाना, फिल्म का नाम गज़ल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।

दर्द भरे गीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी नागौर का ये जन्म चैनल है, अब से लेकर रात्रि के 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश की आवाज में, साथ में वैजयंतीमाला की आवाज भी है, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन की तर्ज। फिल्म का नाम आप जान ही गए होंगे, संगम।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में शागिर्द फिल्म से। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो उसकी

हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: यह है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन

आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954, अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।

0: छतरी हमको भी तुमसे है प्यार, रुमाल हमें देके जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

थे। सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ढोल, ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले हिंदी ओजी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये

उसको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डी जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका

मैं तो ये खाऊंगा, ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया, तो एक दफे सुनाया, उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे, प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता कमों से कर लो जिंदगी में,
2: समझौता कमों से कर लो जिंदगी में कम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफ़ी उलझने कम हो जाती हैं।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज़।

कल्याण जी, आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।